मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 6, तदनुसार 27 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: कर्म आ भाग्यक प्रधानताक प्रश्न सर्वदा विवाद सँ भरल रहल अछि। भाग्यवादी भाग्य के प्रबल माने छथि, हुनका दृष्टि में भाग्य सब किछु थिक। ओ कहता, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। मनुष्य कतबो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, धनवान हो, किंतु जँ ओ भाग्यवान नहीं अछि तो ओकर सबटा विद्या बुद्धि बल आ धन व्यर्थ छैक। भाग्य विपरीत भेने सब साधन व्यर्थ भ जाइ छै। भाग्य जँ प्रबल अछि तऽ चारू में सँ जँ एकोटा नहीं रहे तैयो मनुष्य सफल होइ छै, आदि आदि। कर्मवादी भाग्य के नहीं माने छथि, ओ त अपन पुरुषार्थ, अपन श्रम, अपन अध्यवसाय में विश्वास करे छथि। ओ कहता, मनुष्य जीवन में कर्मे सब किछु थिक, जेहन कर्म करब तेहने फलो प्राप्त हैत। आमक गाछ रोपने आमे फरे छै, बबूर रोपने कांटे प्राप्त होइ छै। तैं कर्मे सब किछु थिक, वह प्रधान थिक। सब युग में ई विवाद रहल अछि आ प्रायः सब दिन रहत, किंतु एकटा प्रश्न अवश्य विचारणीय थिक कि भाग्यक भरोसे मनुष्य कर्म केनाइ छोड़ि दिया, सर्वथा निष्क्रिय भ जाए। कहबी छैक, देव देव आलसी पुकारा, जे आलसी छथि वह भाग्य पर निर्भर रहै छथि। कर्मशील व्यक्ति अपन परिश्रम, अपन अध्यवसाय सँ भाग्यों के रेख बदल दै छथि। दू गोटे पहुँचला भविष्यवक्ता लग। भविष्यवक्ता पहल के कहलखिन, अहाँ एक मास में मर जाए। दोसर के कहलखिन, एक मासक बाद अहाँ राजा भ जाए। पहल व्यक्ति मृत्यु भय सँ सत्कर्म में लाग गेल। दोसर राजा हेबाक विश्वास पर जे किछु अर्जित संपत्ति छले तकरा भोग विलास में फूकऽ लागल। एक मासक बाद पहल व्यक्ति के पैर में ठेस लागले, थोड़ेक मलहम पट्टी कलक ठीक भ गेलै। दोसर व्यक्ति के एक मासक बाद अशर्फीक थैली भेटले, ओकरा त भोग विलासक आदत लाग गेल रहे, ओहो स्वर्ण ओ सुरा सुंदरी में व्यय कऽ देलक। मासोपरांत दुनू व्यक्ति पुनः भविष्यवक्ता लग पहुँचल। पहिल बाजल, अहाँक भविष्यवाणी असत्य भ गेल, मास बीत गेल, हम ठामहि छी।

0: दोसर व्यक्ति बाजल, अहां कहलहुं जे एक मासक बाद हम राजा हैब, कहां भेलहुं? भविष्यवक्ता बजला, कर्म अहां दुनू गोटेक भाग्य रेख के बदल देलक। अहां सत्कर्म में प्रवृत्त भेलहुं तैं अहांक मृत्यु मामूली ठेस में बदल गेल, आ ई राजा बनबाक विश्वास पर दुर्वृत्त में प्रवृत्त भला तैं राजा नहीं बन सकला।
1: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोपी चंद्र झा।
1: श्रोता लोकन सुप्रभात, आज कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानक फसलक संबंध में अनिश्चितता के दूर करे लेल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कयल गेल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानक फसलक लेल प्राकृतिक आपदा के कारण भेल हानि के देखैत किसान के प्रीमियम भुगतान द कऽ एक सीमा तक कम करैत अछि। एहि योजना के अंतर्गत किसान के बीमा कंपनी द्वारा निश्चित खरीफक फसलक लेल 2% प्रीमियम और रबी के फसलक 1.5% प्रीमियम के भुगतान केनाई छल। एहि में प्राकृतिक आपदा के कारण खराब भेल फसलक खिलाफ किसान द्वारा भुगतान कयल जाय वाला बीमा के किस्त के बहुत नीचा राखल गेल, जेकरा प्रत्येक स्तर पर किसान आसानी से भुगतान कऽ सकैत छथि। ई योजना मात्र खरीफ और रबी के फसल के परंच वाणिज्यिक और बागवानी फसलक लेल सुरक्षा प्रदान करैत अछि। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलक लेल किसान के 5% प्रीमियम के भुगतान केनाई अछि। भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावा के निपटान में देरी भेला के स्थिति राज्य और बीमा कंपनी पर जुर्माना लगेबाक प्रावधान शामिल करे के फैसला कयल गेल छल। ई महत्वपूर्ण प्रावधान PMFBI के क्रियान्वयनक लेल सरकार द्वारा जारी नव परिचालन दिशा निर्देशक एकटा हिस्सा अछि। निर्धारित अंतिम तिथि के 2 मास बाद दावा के निपटान केला पर देरी भेला के कारण बीमा कंपनी किसान के 12% ब्याजक भुगतान करत। बीमा कंपनी के दिस से अपन मांग प्रस्तुत करबाक लेल निर्धारित अंतिम तिथि के 3 मास बाद सब्सिडी में राज्यक हिस्सा जारी केला पर विलम्ब भेला के कारण राज्य सरकार 12% ब्याज देत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान के फसल के प्राकृतिक आपदा के कारण भेल हानि के किसान के प्रीमियम का भुगतान द कर एक सीमा तक कम करावित अछि। एहि योजना के लेल 8,800 करोड़ रुपया का खर्च करबाक योजना प्रत्येक साल बनैत अछि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान के बीमा कंपनी द्वारा निश्चित खरीफक फसल लेल 2% प्रीमियम और रबी के फसलक लेल 1.5% प्रीमियम के भुगतान केना अछि। एहि मे प्राकृतिक आपदा के कारण खराब भेल फसल के खिलाफ किसान द्वारा भुगतान कयल जाय वाला बीमा के किस्त के बहुत नीचा राखल गेल अछि, जेकरा प्रत्येक स्तर के किसान आसानी से भुगतान कऽ सकैत अछि। ई योजना मात्र खरीफ और रबी के फसल के नहि परंच वाणिज्यिक और बागवानी फसलक लेल सुरक्षा सेहो प्रदान करैत। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलक लेल किसान के 5% प्रीमियम किस्त का भुगतान केने। अपन विशेषता के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में काफी लोकप्रिय है। योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान का खरीफ का फसल के लिए 2%, रबी और तिलहन फसल के लिए 1.5% और व्यावसायिक और बागवानी से जुड़ल फसल के लिए 5% का अधिकतम सालाना प्रीमियम राशि देने होते। बाकी के प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार बराबर बराबर बांटे। ये योजना का मुख्य उद्देश्य दावा का त्वरित निपटान केने। योजना का दिशा निर्देशक अनुसार दावा कर निपटारा फसल कटाई के 2 महीना के भीतर हेवा के चाहिए। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावा के निपटारा में देरी भेला के स्थिति पर राज्य और बीमा कंपनी पर जुर्माना लगेबाक प्रावधान शामिल करबाक फैसला अछि। ई महत्वपूर्ण प्रावधान PMFBI के क्रियान्वयन के लेल सरकार द्वारा जारी नव परिचालन दिशा निर्देश के एकटा हिस्सा अछि। निर्धारित अंतिम तिथि के 2 मास बाद दावा के निपटान केला पर

0: देरी भेला के कारण बीमा कंपनी किसान के 12% ब्याज का भुगतान करते बीमा कंपनी के दिस से अपन मांग प्रस्तुत केला के लेल निर्धारित अंतिम तिथि के 3 मास बाद सब्सिडी में राज्यक हिस्सा जारी केला पर विलंब भेला के कारण राज्य सरकार 12% ब्याज देते 1 अक्टूबर से शुरू भेल रवि सीजनक ध्यान में रखत न परिचालन दिशा निर्देश जारी कैल गेल न परिचालन दिशा निर्देश में बीमा कंपनी के आकलनक लेल एक मानक परिचालन प्रक्रिया के संगे संगे सेवा मुहैया केला पर अप्रभावी पाओल जाय वाला ए योजना से हटाए जाय के विवरण सेहो शामिल है। सरकार प्रायोगिक आधार पर PMFBI के दायरा में 12 मासी बागवानी फसल के शामिल करे के निर्णय लेने नव परिचालनक दिशा निर्देशक अनुसार अहाँक जंगली जानवरक हमला के कारण फसल नुकसान से होय के स्थिति में बीमा कवर देवे के योजना जोड़ल गेल अछि। एकरा प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित कयल जायत। एहि के संगे आजुक कृषि चर्चा के समय सम्पन्न होइत अछि। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिय, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे गोपी चंद्र झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है।

0: रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: ल्यूकोरिया हमारे समाज में बहुत ही आम बीमारी है जो कि करीब 60% औरतों में पाया जाता है। किसी भी औरत में अगर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाए तो उसे ल्यूकोरिया कहते हैं। यह डिस्चार्ज आमतौर से 15 से 20 साल की उम्र की लड़कियों में या फिर गर्भावस्था के दौरान या अंडेदानी से अंडे निकलने के दौरान या मासिक से पहले बढ़ जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक वैसा ल्यूकोरिया जिसमें बदबू ना हो या जिसके कल्चर से कीड़े ना निकलें। यह या तो सर्विक्स से होता है या वजाइना से होता है। सर्विक्स से उस स्थिति में होता है जबकि सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाए या सर्विक्स की सतह पर जख्म हो जाए या बच्चा पैदा होने से सर्विक्स फट जाए, उस स्थिति में ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। वजाइनल ल्यूकोरिया वजाइना की सतह से डिस्चार्ज उस समय बढ़ जाता है जैसे कि गर्भावस्था के दौरान या अंडदानी में ज्यादा खून का जमना या पेल्विस में इन्फेक्शन होने से वजाइनल ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। स्पेसिफिक जो भी वजाइनल डिस्चार्ज पस की तरह हो और उसमें बदबू हो और उसके कल्चर में कीड़ा निकले उसे स्पेसिफिक ल्यूकोरिया कहते हैं। इसके कारण है ट्राइकोमोनियासिस, ये सबसे प्रमुख और सबसे आम कारण है। इसमें डिस्चार्ज हरा पतला और वजाइना की सतह पर दर्द का अनुभव, वजाइना की सतह में जलन और खुजली हो जाती है। मरीज को पेशाब में जलन, पेशाब करने के बाद दुखन, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द का अनुभव होता है। इस डिस्चार्ज के कल्चर से ट्राइकोमोनास कीड़ा मिलता है। इसका ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम की सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह या टिनिडाजोल 300 मिलीग्राम की सुबह शाम एक सप्ताह। इसके अलावा सेक्निडाजोल की दो गोलियां 1000 मिलीग्राम जो बना देती हैं वो सिर्फ एक बार दी जाती हैं या वजाइना यानी कि मासिक के रास्ते रखने की गोलियां जैसे बीटाडीन वजाइनल पेसरीज कहते हैं या मलहम जिसे जेल कहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कारण है कैंडिडियासिस। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो दही की तरह होता है और ये आमतौर से गर्भावस्था के दौरान या फिर डायबिटीज के मरीजों में पाया जाता है। इसमें भी वजाइना की सतह पर खुजली और जलन का अनुभव होता है। उसके अलावा पेशाब में भी जलन होती है। इसके ट्रीटमेंट में कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल की 150 मिलीग्राम की टैबलेट सिर्फ एक बार दी जाती हैं। इसके अलावा मासिक के रास्ते रखने की पेसरीज जिन्हें हम माइकोस्टैटिन पेसरीज कहते हैं वो भी दी जाती हैं। इनके अलावा क्लमाइडिया भी एक कारण है। इसमें पेशाब में भी जलन होती है, दुखन होती

होती है और डिस्चार्ज होता है। इसके ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम की सुबह, दोपहर, शाम और रात, यानी 4 टाइम 14 दिनों के लिए दिया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट 100 मिलीग्राम की सुबह और शाम 14 दिनों के लिए, या फिर अमोक्सिसिलिन की 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स सुबह, दोपहर, शाम 1 सप्ताह, या एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स सुबह, दोपहर, शाम 1 सप्ताह तक दी जाती हैं। एक और प्रमुख कारण है गार्डेनेला वजाइनालिस वजिनाइटिस। इसमें जो डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया होता है वो मछली की तरह होता है, मछली की तरह की बदबू वाला होता है और ये भी हरे रंग का होता है। इसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल की 500 मिलीग्राम की गोलियां सुबह शाम 1 सप्ताह या 2 ग्राम की एक साथ दी जाती हैं। इनके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम 100 मिलीग्राम की गोलियां 14 दिन या टेट्रासाइक्लिन की 500 मिलीग्राम की गोलियां सुबह, दोपहर, शाम और रात 14 दिन तक दी जाती।

0: जीवन आसान।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल हमालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
6: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
7: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
8: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
9: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
3: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: आज़ादी के एक अजीम रहनुमा थे। वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे और बच्चों से उनकी जो बेपनाह मोहब्बत थी उसकी वजह से हम तमाम लोग उन्हें चाचा नेहरू के लक़ब से भी नवाजते हैं और उनके यौम विलादत को इसीलिए चिल्ड्रेंस डे यानी यौम अतफाल के तौर पे भी मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मुअज़्ज़ज़ कश्मीरी पंडित ख़ानदान में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था जो अपने वक्त के मशहूर बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए थे जहाँ से वो 1912 में वापस हिंदुस्तान आए आला तालीम की डिग्री हासिल करने के बाद, और फिर गांधी जी से मुलाकात के बाद बराह रास्त सियासत में भी शामिल हो गए। कांग्रेस की सदारत भी उन्हें मिली और 1929 में लाहौर के जो सेशन थे उसमें सबसे पहले उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी का जो नारा था उसे बुलंद किया था। आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान उन्हें मुतअद्दिद बार जेल की भी सौबत बर्दाश्त करनी पड़ी थी और ऐसे हालत में उन्होंने तकरीबन अपने ज़िंदगी के 9 साल जेल में गुजारे थे। हम तमाम लोग उन्हें इसके अलावा उनकी जो अपनी बेटी को लिखे हुए ख़त थे, ए लेटर टू हिज डॉटर, इसके ज़रिए से हम उनके ज़िंदगी के हालात के साथ साथ हिंदुस्तान की मुकम्मल तस्वीर भी देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताबें लिखी अदबी तौर पर उसमें उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर काफ़ी अहम हैं। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका दिल्ली में इंतकाल हुआ था और उनकी आखिरी आरामगाह शांतिवन में वो सुपुर्द खाक किए गए। आइए सामीन, इस गुफ्तगू के बाद हम अपने अगले पेशकश की जानी मुतवज्जे होते हैं। लीजिए, आपके समातों के हवाले है ये मकाला जिसका उनवान है उर्दू गज़ल गोई में जदीदियत के असरात, मकाला निगार डॉक्टर जरनिगार यास्मीन।
1: उर्दू गज़ल गोई में जदीदियत के असरात। जदीदियत के अहम रुझानात क्या हैं, इस तहरीक का आगाज़ कब हुआ और क्यों हुआ? इस तरह की तमहीदी गुफ्तगू के बग़ैर अपनी इस बात का आगाज़ करना बेहतर है ताकि उर्दू गज़ल पर इस तहरीक के असरात का एक अजमाली जायज़ा सामने आ सके। मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर किसी भी बातचीत का आगाज़ करने से पहले ये वाज़े कर देना ज़रूरी है कि यहाँ इजहार ख्याल की दो समतें होंगी। एक तो ये कि उर्दू गज़ल के मौजूआत पर इस तहरीक का क्या असर हुआ, और दूसरे ये कि गर्चे अगर मौजूआत अपना उसलूब खुद मुंतखब या मुतय्यन करते हैं मगर असालीब में वाकई कोई तब्दीली आई या नहीं, अगर हाँ तो क्या और किस कदर। इन्हीं दो निकात को लेकर आगे बढ़ती हूँ। सिर्फ ये कह देना भी गलत होगा कि उर्दू गज़ल की रवायत में इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी के ही बयानात मौजूद हैं। मीर के यहाँ गमज़ात के साथ साथ अपने अहद के जो दुख दर्द मौजूद हैं उनसे न सिर्फ पूरी उर्दू दुनिया वाकिफ़ है बल्कि उनमें से बाज़ बयानात तो आज भी कदरे बामानी और रिलेवेंट हैं कि हैरत होती है। मसलन, मीर साहब ज़माना नाजुक है दोनों हाथों से थामिए दस्तार, और ये शेर देखिए कि सहल सी जिंदगी ये काम के तई अपने ऊपर न कीजिए दुश्वार। गालिब की दूरबीनी तो मशहूर ज़माना है, मैं अंदली पे गुलशन नाफरीदा हूँ का दावा सिर्फ दावा नहीं हकीकत है और असलूब भी मुलाजा हूँ। न गुले नगमा हूँ न पर्दे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। तू और आरायश खमे का कुल, मैं और अंदेशे हाय दूर दराज। कौन कह सकता है कि ये अंदाज़े बयां इस तारातो कनाया से खाली है, मगर असल सवाल अपनी जगह रह जाता है कि ये तो जदीद तर्ज़ फ़िक्र या तर्ज़ इजहार के सिर्फ चंद मिसालें हैं। मजमूई तौर

कलामी शायर के तहत आप अभी समाप्त कर रहे थे मज़हर आलम से नातिया कलाम, और अब आई समीन बज़्म मौसीकी के तहत हम आपको ये गज़ल सुनवा रहे हैं। लीजिए मुलायजा।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना पार्वती मिश्रा, कल्याणी सिन्हा सहेली, बोध नारायण सिंह और शारदा सिन्हा को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे अगले उद्घोषणा की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं रोनू मजुमदार और किशन महाराज। श्रोताओं आइए इनसे सुनते हैं राग अहिर भैरव में अलाप जोध झाला।
1: नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तबला बजाने के लिए परम पूज्य मेरे गुरु समान पंडित किशन महाराज जी मंच पर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं जब भी इनकी तरफ देखता हूं

तो मुझे अपने गुरु की छवि दिखाई देती है इनके चेहरे पर। इनके साथ एक मंच पर बैठना बड़े सौभाग्य की बात है, और ये संभव हुआ तो इन्हीं के आशीर्वाद से। मैं इस लायक तो नहीं हूं, मगर जो भी मैंने टूटा फूटा सीखा है वो प्रस्तुत है। शुरू करने से पहले मैं परम पूज्य महाराज जी चाचा जी से आशीर्वाद चाहता हूं, और उपस्थित गुणीजनों से सबसे मैं इजाजत चाहता हूं। प्रस्तुत है राग अहीर भैरव, आलाप जोड़ झाला, और दो बंदिशें ताल धमार और तीन ताल।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में रोनू मजुमदार और किशन जी महाराज से बांसुरी वादन, राग अहिर बिलाव और अलाप जोध और झाला। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग का।

0: कार्यक्रम में विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
0: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
0: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
0: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
0: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
0: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
0: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
0: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी,
1: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश

0: का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण

0: जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को

0: शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
2: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
3: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
2: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
3: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
2: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
4: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
5: क्या बात है,
4: सुनकर ही जोश आ गया।
5: हाँ
4: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
5: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
1: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनके किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य

0: आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं।

0: ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
1: हमला करो, दुर्गा माता की जय,
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
3: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
2: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
3: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी, सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण, तू भी बचवाला है, पीछे हट।
5: नहीं, लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई।

उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए

उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोता, भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब आप आने लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म मिस्टर सेलिब्रिटी से। गायक कलाकार हैं अभिलिप्सा पांडे, गीत लिखा है योगेश पंडित ने और इस गीत को धुन दिया है विनोद ने।

श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल को भी आप सुने थे फिल्म माँ में। गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया था रॉकी शिव ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म लापता लेडी से। संगीत निर्देशन राम संपत के हैं, गीत लिखा है श्वानंद किरकिरे ने।

प्रशांत पांडे के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म लापता लेडी से। संगीत निर्देशन राम संपत के थे। श्रोता अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिशन मंजू से। इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल ने, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने, गीत के बोल लिखे हैं सब्बीर अहमद ने।

सबीर अहमद के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे राज बर्मन की आवाज में, संगीत निर्देशन तनिष बागची ने किया था। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे फिल्म यार यार टू से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और मनन भारद्वाज। गीत और संगीत दोनों ही मनन भारद्वाज के हैं।

अरिजीत सिंह और मनन भरद्वाज को भी आप सुने थे फिल्म यार यार टू में। इसी गीत के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नाड़ी संसार सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज फिर से होगी कार्यक्रम में ढेरों सारी बातें, साथ ही आप सुनेंगे प्यारे प्यारे फिल्मी गीते। बहनों, जीवन में अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने मन और कार्यों पर विजय प्राप्त करना है। अनुशासन वह पुल है जो आपके लक्ष्यों और उपलब्धियों को आपस में जोड़ता है। जब आप खुद से किए गए वादे, जैसे सुबह जल्दी उठना या समय पर काम खत्म करने को पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अनुशासित रहकर कम समय में और बेहतर गुणवत्ता के साथ काम कर पाते हैं। इससे आपको मानसिक तनाव भी कम होता है। यह आपको अपने लिए शौक और परिवार के साथ अतिरिक्त समय बिताने के लिए भी समय देता है। इससे आपके समाज में आपकी छवि एक विश्वसनीय और जिम्मेदारी व्यक्तित्व के रूप में बनती है, जिससे नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। बहनों, अनुशासन ही सफलता की आधारशिला है। यह हमें समय सदुपयोग करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। हर व्यक्ति को जीवन शैली में अनुशासन का पालन करना चाहिए। यह सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति को सबसे बड़ी कुंजी है। दिल्ली में अनुशासन का पालन करने के लिए छोटे और व्यवहारिक लक्ष्यों से शुरुआत करें। अपने दैनिक दिनचर्या में जैसे उठने, खाने और सोने का समय जरूर समय तय करें। आलस को दूर करके सभी कामों को समय पर करने का प्रयास करें। छोटी छोटी आदतों को सुधारते हुए, जैसे रोजाना सुबह उठने का समय बनाएं, रोजाना 10 मिनट पढ़ना या व्यायाम करना और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अपने कार्यों में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय सीमा तय करें। एक दिन पहले शेड्यूल बनाएं, कौन कौन से काम किस समय पर करना है। इससे काम आपके आसान हो जाएंगे और समय पर भी होंगे। बहनों, ध्यान भटकने वाली चीज़ों से दूर रहें। सोशल मीडिया, अत्यधिक टीवी, मोबाइल फ़ोन चलाना या काम को टालना, इनमें सुधार करें। जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करें। बहनों, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, इसीलिए इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं।

हर जगह पर नियमों का पालन करें, ऑफिस हो या घर, हर काम समय पर करने की आदत डालें, सड़क पर यातायात नियमों का पालन करें, सामाजिक नियमों का भी पालन करें, सामाजिक नियमों, कानूनों और परंपरा का सम्मान करें। बहनों, अनुशासन का अर्थ किसी बंधन में बांधना नहीं बल्कि अपने जीवन को सही और सुचारू रूप से चलाना भी है। जब हम हर जगह अनुशासित रहकर काम करते हैं तो प्रगति और सम्मान दोनों स्वतः ही हमारे कदम चूमते हैं। बहनों, साथी, अगर हम अनुशासित रहते हैं तो हमारे घर में हमारे बच्चे उन्हें देखकर ही सीख जाते हैं, तो हमें हर समय अनुशासित रहना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम घर से इसकी शुरुआत करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी आदत बनती है और ये आदत हमें घर से बाहर भी बनी रहती है। तो अनुशासन का पालन जरूर करें और अपने बच्चों को भी शुरू से ही सिखाएं। बहनों, कार्यक्रम में हम आगे भी बातें करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं पहले ये गीत।

0: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन बहनों, इसी के साथ बढ़ती हूँ अपनी चर्चा की ओर। बहनों, कार्यक्रम में आगे बातें करने से पहले आइए पहले सुनते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत। विषय है गर्मी में खान पान का रखे ध्यान। वार्ताकार है विजेता सिन्हा।
1: नमस्कार बहनों, एक छोटी मुलाकात अंक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सहेली विजेता। बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में खान पान का खास ख्याल रखने की। तो बहनों, गर्मी अभी अपनी चरम सीमा पर है। तेज धूप के कारण लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो रहा है, पर जिन्हें बाहर निकलना जरूरी होता है वो तो हर हाल में बाहर निकलते ही हैं और अपने कामों को भी पूरा करते हैं। मतलब जिन्हें ऑफिस जाना होता है वो ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं घर के कामों को देखते हुए बाहर के कामों को भी करती हैं। उनके लिए क्या गर्मी, क्या जारा, क्या बरसात, हर मौसम समान है। तो कहने का मतलब है कि हर काम अपने तय समय पर होता है, तो हम इन कामों को करने के लिए हमेशा स्वस्थ रहें हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बहनों, इसके लिए हमें अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा ताकि हम हर मौसम का आनंद ले सकें। जैसे इस गर्मी के मौसम में ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं, सुबह हल्का फुल्का नाश्ता अवश्य करें। अंकुरित मूंग मटर अवश्य नाश्ते के रूप में लें। अधिक तेल मसालों का सेवन करने से बचें। ठंड के दिनों में तो ये थोड़ा बहुत पच भी जाता है, ज्यादा नुकसान नहीं करता, पर गर्मी के दिनों में अधिक तेल और मिर्च मसालों वाला सेवन पेट में जलन उत्पन्न करती है। इसलिए गर्मी के दिनों में ज्यादा तेल मिर्च मसालों के सेवन से बचने की कोशिश करें। बासी भोजन करने से बचें, क्योंकि इससे पेट में गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, तो बासी भोजन करने से बचें। जितना हो सके ताजा भोजन ही करें। भोजन में दही या दही से बना रायता सलाद को अवश्य शामिल करें। जितना हो सके ठंडी चीजें ही खाएं। बाहर के कोल्ड ड्रिंक के बजाय इन दिनों कच्चे आम का शरबत बनाकर पिएं, नींबू पानी बनाकर पिएं। ये आपको अंदर से ऊर्जा भी देगी और डिहाइड्रेट

सके ठंडी चीजें ही खाएं, बाहर के कोल्ड ड्रिंक के बजाय इन दिनों कच्चे आम का शरबत बनाकर पिएं, नींबू पानी बनाकर पिएं। ये आपको अंदर से ऊर्जा भी देगी और डिहाइड्रेशन की समस्या भी दूर होगी। दही से बना लस्सी पिएं, ये पेट को अंदर से ठंडा रखता है। इसके अलावे नारियल पानी अवश्य पिएं। बच्चे जब स्कूल से घर आए तो उन्हें तुरंत फ्रिज से पानी निकालकर पीने से मना करें, क्योंकि धूप में से तुरंत आकर फ्रिज का ठंडा पानी पीने से उन्हें सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। इन दिनों जितने भी मौसमी फल हैं, खीरा, ककड़ी, लीची, आम, जो भी मौसमी फल हैं, उनका सेवन अवश्य करें, क्योंकि ये फल आपको गर्मी के दिनों में ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती है। तो बहनों, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना चाहती हैं, उन्हें गर्मी की मार से बचाना चाहती हैं, तो इस तरह की थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें और गर्मी के इस मौसम का आनंद उठाएं। तो अब अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।

बहनों, अभी आप सुन रहे थे गर्मियों में खान पान का रखे ध्यान। बहनों, ये सच है अभी का समय बहुत तपसी वाली है, तो इस समय हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो आप गर्मियों का आनंद लेते हुए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। बहनों, इसी के साथ फिर से बढ़ती हूँ अपनी चर्चा की ओर। बहनों, लगभग हर बच्चों को गर्मियों का छुट्टी मिल चुका है और किसी को मिलने वाला होगा, और सभी उत्साह से भरे होंगे कि गर्मी की छुट्टी आ रही है और अब तो हमें छुट्टियां घर पे बिताना है या बाहर घूमने जाना है। बच्चों को तो लगता है छुट्टियां मिल गया, जैसे सब कुछ मिल गया, पढ़ाई से उन्हें छुटकारा मिल गया। लेकिन बहनों, बच्चों को खेल कूद के माध्यम से घर में रह के चाहे बाहर घुमा के उन्हें ऐसे काम भी सिखाने हैं जो ये अनमोल समय उसके लिए बन जाए, जिस चीज़ में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी है, जिस चीज़ को करने का मन है, उस चीज़ में उन्हें अच्छी तरह से उन्हें सिखा सके। बहने, छुट्टियों का आनंद लेने और नई चीज़ें सीखने का यह सबसे अच्छा समय होता है। इन छुट्टियों में वे हर दिन कुछ नया सीख पाते हैं और अपने परिवार के और नज़दीक आ पाते हैं। ठीक इसी तरह माता पिता के लिए भी यह समय बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो भी अपने बच्चे को समय दे पाते हैं और उसे और अच्छी तरह से जान पाते हैं कि उनकी कमी क्या है और किस चीज़ पर उन्हें ज़्यादा कार्य करना सिखाना है। छुट्टियां जीवन का सबसे सुखद हिस्सा होता है। गर्मी की छुट्टियां केवल आराम करने का समय नहीं होता, बल्कि यह एक अवसर होता है खुद को बेहतर बनाने, नई चीज़ें सीखने और अपने बच्चों के साथ शौक पूरे करने का। कई तरह की सोच समझकर बनाई गई और दिलचस्प गतिविधियों को शामिल करके गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए बेहद मनोरंजक और मज़ेदार बनाई जा सकती हैं। ये अभिभावक के लिए भी अपने बच्चों के साथ समय बिताने और उनके साथ यादगार पल बनाने का यह सबसे अच्छा अवसर है। अपने बच्चों के साथ इस अनमोल समय का आनंद ले और बच्चों की रुचियों को समझते हुए उन्हें नई चीज़ें सिखाएं। बहनों, सबसे पहले देखें कि बच्चा खाली समय में क्या करना पसंद करता है। अगर बच्चे को पेंटिंग करना पसंद है, संगीत सुनना पसंद है, संगीत गाना पसंद है, या नृत्य करना पसंद है, इंडोर गेम या आउटडोर गेम खेलना पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, या बागवानी करना पसंद है, इस तरह की गतिविधियां अगर उसे करना पसंद है तो उन्हें नए हुनर सिखा सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों का सही उपयोग करके बच्चों को आप बेहतरीन और उपयोगी कौशल सिखा सकते हैं। बाहरी शिक्षा से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल और चुनौतियों से निपटने में रचनात्मक तरीके सीखने में मदद मिलती है। शारीरिक गतिविधियां बाहरी खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से बच्चों को घूमने फिरने, ऊर्जा खर्च करने और पसीना बहाने के लिए पर्याप्त जगह और स्वतंत्रता मिलती है। बहनों, जीवंत बाहरी गतिविधियों में भाग लेकर वे अपनी गति शक्ति, सहन शक्ति और शारीरिक क्षमता बढ़ा सकते हैं। इससे उनकी जागरूकता, आत्मविश्वास और अपने शरीर के बारे में ज्ञान में सुधार भी होता है। इसके लिए आप अपने बच्चों को शहर की यात्रा करा सकते हैं, रोड ट्रिप पर ले जा सकते हैं, दूर के रिश्तेदार से मिलवा सकते हैं,

या आप अपने इलाके या नए इलाकों को जान सकते हैं। स्थानीय मेले बाज़ार में आप बच्चों को घुमा सकते हैं, वहाँ भी उन्हें बहुत सारी जानकारी भी मिलेंगी, साथ साथ उनका मनोरंजन भी होगा। बच्चों के लिए ऐसे पर्यटन स्थल चुनें जो मनोरंजन के साथ साथ उन्हें कुछ नया सीखने, प्रकृति के करीब रहने और ऊर्जावान बनाने में भी मदद करे। जगह का चुनाव करते हुए बच्चों की उम्र और ध्यान जरूर रखें। बहनों, एडवेंचर और मनोरंजन पार्क ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, विज्ञान और ज्ञानवर्धक जैसी जगहों पर भी ले जा सकते हैं। बहनों, पारिवारिक छुट्टी आपसी संबंध मजबूत करने का शानदार तरीका है। साथ ही रोजमर्रा भागदौड़ से ब्रेक लेना, खुद को तरोताजा करना, आत्मविश्वास बढ़ाना और अपनी रुचियों को निखारने, प्रियजनों के साथ यादें बनाने के लिए भी गर्मी छुट्टी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को ही नया स्किल सिखाएं, नई चीज़ें सिखाएं। बहनों, खुद भी काम के बीचों में थोड़ा सा अंतराल लेकर गर्मियों की छुट्टियों का मज़ा ले और बच्चों के साथ आनंद करें, बच्चों के साथ खेलें, कूदें और बाहर घुमाने ले जाएं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है, रोज़मर्रा का जो काम है, उससे आपको रिलैक्स होगा और फिर बाद में काम को करने में ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपका मन लगा रहेगा। तो बहनों, आप गर्मियों का छुट्टी का ज़रूर आनंद लें, अपने बच्चों को नया वर्क सिखाएं, जिस चीज़ में उसको दिलचस्पी है उसमें ज़रूर सिखाएं। तो इन्हीं बातों के साथ आइए फिर से सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का।

0: नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के बारे में।

0: जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसे ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
0: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
0: ओह, इकबाल फिल्म का गाना है।
1: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूँ कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहाँ आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहाँ से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की ज़िंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियाँ कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो

0: ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फेटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है, फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया के से आ रही। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं। 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं। तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप इसे प्ले कर सकते हैं।

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया। डॉक्टर सुनीता,
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ।

0: एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया. तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए. फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: फ्लाइट में थोड़ी पैनिक हो जाता है. तो सीनियर सिटीज़न को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए. जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई. अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी, तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए. तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड. तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया. और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में. ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन. तो
1: लेकिन ये
0: अगर
1: कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई. आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो लाइक कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं, बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है, तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं. उससे में हमारे दो फायदे होते हैं. एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं. एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमिडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए. बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए. ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है. इट्स टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स. तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में. तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं, 2014 से. तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया. हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया. उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी. तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया. और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है.
1: जी जी.
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए. आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है. और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं. अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
1: जी.
0: तो वो एक अच्छा मकसद है. एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था. CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी.
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है.
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है.
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है. और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं. तो उसको ये जेन्युइन डर था. तो मैंने बोला देखो, अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फ़ायदा नहीं. हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है. अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ. जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो. एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो. और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा. एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला. अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा. तो हमें कोशिश करनी चाहिए. हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं. मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी. तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है. और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं. तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी

0: ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको?
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स को ये होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न होते। बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें, शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लम्प, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लम्प था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, तब मैं बायोप्सी करूँगी, तब मैं ये करूँगी. मुझे 5-10 मिनट तो उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
0: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलोअप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए, और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गढ़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप

0: क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था।
1: ओह
0: लेकिन
1: गॉड,
0: उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, मतलब एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको, आपको तो
1: जी
0: इतना दूर पहुंचा दिया, आपने वो दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है, तो उसके साइड इफेक्ट हुए,
1: जी
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, ये हर घर की है।
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो
1: यस।
0: वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई है, एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गेन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है।

0: डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
1: तो मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
0: पापा जल्दी आ जाना।
1: ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
0: सुनते ही गाना

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। आरंभ हो रही है आज की हमारी दूसरी सभा। सभा के प्रारंभ में आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी। युववाणी के अंतर्गत आज हम सुनेंगे तरुण कुसुम।

कार्यक्रम तरुण कुसुम में आप सभी युवा श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन आज की एक सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है और इसको देखते हुए जो हमारे युवा हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर और बदलते मौसम इसके प्रमाण हैं। दुनिया की विशाल युवा आबादी इस संकट से सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। इसलिए एक सुरक्षित भविष्य के लिए युवाओं की जागरूकता, नवाचार और सक्रिय भागीदारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वैसे सभी प्राणियों में मनुष्य एक ऐसी जाति है जो धीरे धीरे जिस तरह के माहौल, जिस तरह के पर्यावरण, जिस तरह के वातावरण होते हैं, हम अपने आप को उस अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि हम कभी अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, जितना तक बन पाए प्रकृति के सानिध्य में रहना हमारे लिए श्रेयकर होता है। श्रोताओं, आपसे बातचीत यूं ही चलती रहेगी, सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं दीपक कुमार झा। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान और मौसम के चक्र में दीर्घकालिक बदलाव। जी हां श्रोताओं, आज हम जलवायु परिवर्तन और इसमें युवाओं की जिम्मेदारी पर चर्चा कर रहे हैं। अनियोजित औद्योगिकरण, वनों की अंधाधुंध कटाई और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हो गई हैं। हम देख ही रहे हैं कि अभी कितनी गर्मी पड़ रही है। कभी अचानक से आंधी उठती है, फिर बारिश होती है। पिछले दिनों जो इतनी जोर से आंधियाँ उठी थी कि बहुत सारे पेड़ उखड़ गए। और यूं देखते हैं कि जब ठंड का मौसम आता है तो अत्यधिक ठंड भी पड़ने लगती है। तो यही जो है वह जलवायु परिवर्तन का जो संकेत है हमें, यही है कि हम असमय बारिश, असमय गर्मी और इस तरह से जो एक आम जिंदगी है, वो आम जिंदगी एक समझिए कि बदहाल की स्थिति में, या यूं कहें कि परेशान हो जाते हैं। अब युवाओं की जो भूमिका है वो सबसे

अहम है इसमें। उनकी भूमिका और जिम्मेदारी की बात करें तो युवा केवल आज के दर्शक नहीं बल्कि कल के भविष्य और निर्णयकर्ता हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने और पर्यावरण को संरक्षित करने में युवा बहुत सारे तरीकों से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो तमाम जिम्मेदारियों पर हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक और गीत सुनते हैं।

आयो सखी नहीं रे। अभी हम उज्ज्वल कुमार मल्लिक की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। और युवा मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और युवाओं की जिम्मेदारी पर। वाकई युवाओं के ऊपर तो पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व टिका हुआ है, और उन्हीं के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ जो पर्यावरणीय, जो हमारा संतुलन एक होना चाहिए, इसकी भी अहम जिम्मेदारी हम युवाओं के ही ऊपर है। यदि हम यूं बात करें कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और पर्यावरण को संरक्षित करने में किस तरह की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी, तो सबसे पहला आता है जागरूकता फैलाना। युवा सोशल मीडिया और स्थानीय अभियानों के माध्यम से अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा देखा जा रहा है कि अब कई कार्यक्रमों में जो अपने अतिथियों को सम्मानित किया जाता है, उन्हें पौधे देकर के सम्मानित किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश है हमारे लिए, लेकिन इसके आगे की भी हमें सोचना चाहिए। जब हमें पौधे मिलते हैं, उस पौधे को हम अपने घर ले जा करके उस पौधे को लगाएंगे या किसी सार्वजनिक जगह पर उस पौधे को लगा देंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। कई सारे अखबारों में, कई सारे वीडियोस में, फ़ोटो में देखे जाते हैं कि पौधरोपण का एक अभियान की तरह पौधरोपण का कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन इसके बाद की जो बातें हैं वो हमें अक्सर कम ही सुनाई पड़ती है कि वो सारे जो पेड़ लगाए गए थे वे सारे सूख गए, या अभी तक पेड़ हरे भरे हैं, उनकी सेवा की जा रही है। तो सतत जीवन शैली यानी सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की बात करें तो दैनिक जीवन में छोटे बदलाव जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ऊर्जा बचाना, बिजली के उपकरण बंद करना, निरर्थक उपयोग नहीं करना, साथ ही जल संरक्षण, ये सभी हमें बड़े परिणाम दे सकते हैं। इसके साथ ही वृक्षारोपण और संरक्षण की बात करें तो पौधे लगाना और जंगलों की कटाई रोकना जलवायु परिवर्तन को कम करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। अपशिष्ट प्रबंधन की यानी वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कचरे को सही तरीके से छांटना, गीला और सूखा कचरा अलग करना और रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देना हम युवाओं की मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए गीत सुनवा रहे हैं।

हे माधव हे कृष्ण मुरारी, अभी हम ये भजन सुन रहे थे। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और इसमें युवाओं की भूमिका। इस विषय पर आज हम अपने युवा श्रोताओं से बातचीत कर रहे हैं। श्रोताओं, युवा स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति निर्धारक जो होते हैं उनसे पर्यावरण अनुकूल नीतियों को लागू करने की मांग कर सकते हैं और जलवायु न्याय के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए युवाओं की ऊर्जा और

नवीन विचारों की आवश्यकता है, और केवल विचार ही नहीं, उस पर अमल करने की भी आवश्यकता है। आज का युवा वर्ग अपने व्यवहार में बदलाव लाकर और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाकर इस संकट को टालने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण ही मानव जाति का असली भविष्य है। श्रोताओं, जलवायु संकट से लड़ने के लिए युवाओं के योगदान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा जो जानकारी है वो हम देख सकते हैं, वहाँ से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की जिम्मेदारी केवल जागरूकता तक ही सीमित नहीं है। युवा समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं, टिकाऊ नीतियों का समर्थन कर सकते हैं और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने वाली तकनीकों का आविष्कार कर सकते हैं। और ये हमारे युवाओं, कई सारे जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो युवा हैं वो कुछ न कुछ अपने क्षेत्रों में नवाचार तो करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे जो है हमें कुछ ऐसे कुछ इस तरह की तकनीकी हमें अभी भी आवश्यकता है जिससे जो जलवायु हमारे परिवर्तन हो रहे हैं उसके कुछ वैकल्पिक उपाय हों। तो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन पुनः हम गीत संगीत की ओर चलते हैं।

श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन और युवाओं की जिम्मेदारी, इस विषय पर आज के इस युवाणी कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं से बातचीत कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के चलते उपजे खतरों को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग कारण और निवारण पर साल 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौते को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने के स्तर से नीचे रखना है। समझौते का उद्देश्य उपयुक्त वित्तीय प्रवाह, नए प्रौद्योगिकी ढांचे और उन्नत क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए देशों की क्षमता में वृद्धि करना भी है। जीवन और आजीविका बचाने के लिए महामारी और जलवायु आपातकाल दोनों को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। हमारे ग्रह पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसमें नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और मजबूत कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सतत विकास के उपायों में निवेश करने, ग्रीन जॉब, हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने, पृथ्वी को स्वस्थ रखने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर व पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। यह बात ज्ञात हो कि कोई देश अकेले ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है। इस खतरे को सभी मिलकर ही दूर कर सकते हैं। आइए एक और गीत सुनवाते हैं, देवी गीत।

काली एलों दरबार। अभी हम ये देवी गीत सुन रहे थे अरविंद कुमार झा की आवाज़ में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अपने युवा श्रोताओं को फिल्म संगीत सुनवाते हैं। आइए फिल्म संगीत का आनंद लें। पहला गीत हमने लिया है फिल्म याराना से।

गीत गाता चल इस फिल्म से अभी हम ये गीत सुन रहे थे जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी की आवाज में। इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत तरुण कुसुम कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब हमें आज्ञा दें, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तरुण कुसुम। अब हम समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और

0: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष बचे हुए कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। इसके बाद 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली में संवाद।

6:30 पर समय होगा गाम घर का, और इसी के अंतर्गत आप 7 बजे सुनेंगे खेती गृहस्थी। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोताओं, कुछ फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:52 पर और 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिंगरहार।

रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे दिल्ली से रात 9:30 पर। वहीं रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी। रात 10:30 पर आप सुनेंगे गीतों के रंग।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से शेष बचे हुए प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं विद्यापति गीत।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं विद्यापति गीत। अभी इस गीत के कलाकार थे काशीनाथ झा किरण। अगला आवाज है गौतम मिश्र के।

अभी आप सुन रहे थे गौतम मिश्र की आवाज़ में ये विद्यापति गीत, और आइए पुनः इन्हीं की आवाज़ में एक और विद्यापति गीत सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये विद्यापति गीत गौतम मिश्र की आवाज में। इसी के साथ विद्यापति गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इसके साथ साथ आप हमें अपने एंड्रॉयड मोबाइल सेट के माध्यम से न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। अब आइए सुनते हैं मैथिली संवाद। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना से प्रस्तुत एच संवाद, संवादक संघ होमची प्रियंका कुमारी। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूचीक विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के वैध और संवैधानिक करार दिलक अछि। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांतक अध्यक्षता वाला पीठ बिहार समेत दोसर राज्य सब में SIR संवैधानिकता के चुनौती देवे वाला याचिका सब पर सुनवाई करैत ई फैसला सुनाओल गेल। पीठ कहलन जे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था अछि और एकर निष्पक्ष तथा

0: शुद्ध मतदाता सूची तैयार करवाक अधिकार अछि। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आई सार्वजनिक वितरण प्रणालीक अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस के जारी रखबाक मंजूरी देल गेल। एहि लेल केंद्र सरकार दिससँ 25,530 करोड़ रुपैयाक आवंटन कयल गेल अछि। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नव दिल्ली में मीडिया के ई जानकारी देलनि। सीएम सम्राट चौधरीक अध्यक्षता में भेल कैबिनेट बैसार में कुल 27 एजेंडा सब पर मुहर लागल अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नालंदा जिलाक एकटा सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजनक बाद 60 छात्रक स्वास्थ्य खराब होयबाक घटना पर स्वतः संज्ञान लेल गेल अछि। आयोग द्वारा एकरा मानवाधिकार उल्लंघनक गंभीर मामला मानैत जिलाधिकारी सँ 2 सप्ताहक भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगल गेल अछि। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल दाखिल खारिज ई मापी और अभियान बसेराक लंबित मामला सभक तेजी सँ निपटारा करबाक निर्देश देलनि अछि। विभागीय समीक्षा बैसारक दरमियान ओ कहलनि जे 15 दिनक बाद एक बेर फेर सँ कार्य निष्पादनक समीक्षा होयत। श्री जायसवाल किसान पंजीकरण अभियान के गति देबाक लेल परिमार्जन मामला सभक शीघ्र निष्पादनक सेहो निर्देश देलनि। आम लोकक समस्या सभक निपटाराक लेल पंचायतक तर्ज पर आब राज्यक नगर निकाय सब में सेहो सहयोग शिविरक शुरुआत होयत। एहिमे लोक सब सँ प्राप्त आवेदनक आधार पर हुनक समस्या सभक समाधान 30 दिनक भीतर कयल जायत। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सब प्रमंडलीय आयुक्त जिला पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सबके निर्देश जारी कऽ शिविरक तैयारीक निर्देश देलनि अछि। पंचायते जकाँ नगर निकाय क्षेत्र सब में सेहो प्रत्येक मासक पहिल और तेसर मंगल दिन के सहयोग शिविर लागत। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवा निवृत्त सैयद अता हसनैन कहलनि जे सब कुलपति हर महीना कम से कम 2 बेर अंगीभूत कॉलेज सभक निरीक्षण करतैत। एहि संबंध में सब कुलपति सबके दिशा निर्देश जारी कऽ देल गेल अछि। विश्वविद्यालय सबके समर्थ पोर्टलक प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दैत सब प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधि सबके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनबाक निर्देश देल गेल अछि। प्रदेशक उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा सब में लगातार भऽ रहल वर्षाक कारणे तापमान में कमी आयल अछि। हालांकि दक्षिण बिहारक तापमान एखनो सामान्य सँ ऊपर बनल अछि। मौसम विभाग सँ प्राप्त जानकारीक अनुसार पिछला 24 घंटाक दरमियान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवाक संग मूसलाधार वर्षाक चेतावनी जारी कयल गेल अछि। ओतहि राज्यक दक्षिण मध्य जिला सभक किछु भाग में तेज हवाक संग मेघ गर्जन और वज्रपातक संभावना जताओल गेल अछि। ओतहि पटनाक अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना और नियमित काडरक भर्तीक लेल वर्ष 2027 ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 1 जून सँ 12 जून धरि आयोजित कयल जायत। उम्मीदवार आधिकारिक भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट सँ अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कऽ सकैत छथि, परीक्षा संबंधी निर्देश पढ़ि सकैत छथि और मॉक टेस्ट दऽ सकैत छथि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिक छात्र सभक उत्थानक लेल सरकार प्रतिबद्ध अछि। मुख्यमंत्री आइ पटना में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026क अंतर्गत बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीमक तहत छात्रवृत्ति लाभुक सभक संग संवाद कार्यक्रम के संबोधित कऽ रहल छलाह। कुर्बानीक त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद काल्हि मनाओल जायत। एहि दरमियान सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व सम्पन्न करेबाक निर्देश देल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का

0: घर आंगन सुननहार समस्त स्नेही श्रोता बहिन लोकन के हमर नमस्कार आ मोनी बहिन अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार लाल बहिन संगे सब श्रोता लोकन के आ बहिन सब के आधी आबादी के कार्यक्रम घर आंगन में स्वागत करे छी।
0: आ घर आंगन जहन हम सब बहिन सब बैसे छी तो बहुत रास गप करे छी आ सब गप एहन आवश्यक होइए जे ई नहि जे कते गोटा कहै छथि बहिन सब बैसती तो बहुत गप करती नहि तऽ हम सब काजक गप करे छी।
1: एकदम एकदम अपना सब कतेक गप साझा करे छी आ एक बहिन से दोसर बहिन तक जखन जानकारी पहुँचैत अछि
0: तऽ सब लाभ उठबै छथि। बहुत बहिन घर से कम निकलै छथि तऽ हुनका तऽ नहि जानकारी रहै छनि तऽ जे बहिन निकलै छथि से जानकारी जहन सब एक ठाम घर आंगन में बैसै छी गप करै छी तहने सबटा जानकारी प्राप्त होइत अछि।
1: लाल बहिन कनिक दुविधा भऽ जाइ छै जे आन ठाम से कोनो सुनल गप पर भरोसा करी कि नहीं करी।
0: हाँ हाँ।
1: जखन अपना सब कार्यक्रम घर आंगन में अपन बहिन सब के जे गप कहै छी ओहि पर ओ सब पूर्ण रूप से भरोसा करैत
0: छै। जहन सब गोटा बैसे छी आ बात करै छी तऽ बुझाइए ना ई गप सत्य छै आब एक आगू हम सब बैठ सकै छी
1: विचार कऽ
0: सकै छी एहि बिंदु पर आ ओना नहि होइ छै जे हाँ सुनलहुँ कतौ हवा बसात जेना तऽ ओहि बातमे विश्वास करू कि नहि करू। आ देखियो मोनी बहिन अपना सब तऽ काज घर आंगन सम्हारते छी बाहरो सम्हारै छी मुदा एतबे नहि अपन स्वास्थ्य पर सेहो हमसब बहुत ध्यान राखै छी। देखियो प्रतिदिन हमसब व्यायाम योगा सब करै छी आ संगे घरक काज सँ तऽ हमरा सबके व्यायाम भइए जाइए किया तऽ भिनसर जे उठै छी आ रात के 11 बजे तक हमर सबके अनवरत काज चलैत
1: रहैए।
0: ओहिमे भोजन जे हमसब बनबै छी ओ तऽ सबसँ प्रमुख काज अछि।
1: एकदम संतुलित आहार अपना सबके खेनाइ ई बहुत आवश्यक अछि
0: आ स्वच्छता पर ध्यान राखब। भोजन बनेनाइ कोनो ई बहादुरी के काज नहि छै हाँ साफ सुथरा स्वच्छ बनाबी। एहिमे हम कहब कते बहिन के हम देखै छियनि जे हमरा ओ अधलाह लगैए मोबाइल ओ लगेने रहती एक हाथे भोजन बनबैत रहती ई एकदम नहि हेबाक चाही किया तऽ मोबाइल हमसब सामूहिक जगह पर जतऽ जाइ छी हॉस्पिटल जाइ छी कतौ लऽ जाइ छी ओकर हमसब करै छी उपयोग तऽ ओ गन्दा रहैए ओहिमे बहुत रास कीटाणु बैक्टीरिया रहैए तऽ ओहि हाथसँ कखनो भोजन नहि बनै
1: एकदम जेनाकि मोबाइल चलेलहुँ वएह हाथसँ बिना हाथ धोने अपना
0: तरकारी बनबै छी अहाँ कलछुल चला रहल छी आइ देखबनि एक हाथसँ मोबाइल पकड़ तऽ ई बड्ड अधला गप ई कखनो नहि मोबाइलके अहाँ धो लिअ जब तक भोजन बनबै छी कतेक 1 घंटा लगै छै भोजन बनाबैमे 1.5 घंटा लगै छै अहाँ मोबाइलसँ दूर रहू भोजन बना लिअ तखन अहाँ मोबाइलमे जे करबाक अइ करू आ भोजन बनाबसँ पहिने से हाथ के साबुन सँ धोकऽ तखन भोजन बनेनाइ शुरू करू
1: कि हाथ के धोकऽ तखन आटा सानू आ साइन के ओकरा उघारे नहि छोड़ि दै के छै अपन सब बहिन के देखबै जे कि बस बनाबे ले जाइ छी तऽ कथी ले झाँपब नहि अहाँके 2 मिनट लागै के छै जँ जेना चकला बेलना धोइ छी तवा धोइ छी तऽ तहिना झाँपि लिअ आ बढ़िया सँ
0: कते झाँपऽ मे समय लागत
1: एकटा बर्तन जरूर से झाँपना राखी झाँपि कऽ अपना सब ऐसे की छै देखियो कतबो अपना सब अखन आम के समय
0: माछी रहैए घर में कतबो अहाँ साफ सुथरा करब एक आटा माछी अहाँ के भेटि जायत
1: आ माछी के की आदत चलि होइ छै जे कि जखने आटा सानब चाहे तरकारी काटब ओहि पर जाकर बैस रहब
0: एको मिनट अहाँ उघा राखब तऽ ओ नहि अहाँ के सो बैसिए टा जायत तै अहाँ बहुत नीक गप कहलहुँ जे भोजन बनेनाइए नहि ओकरा झाँपि कऽ रखबाक चाही किनको अगर परोसै छी ओहिके बाद फेर ओकरा सब किछु के झाँपि कऽ रखबाक चाही तऽ एहि सब शुद्धता पर जहन अहाँ ध्यान राखब तऽ अपने तऽ स्वस्थ रहबे करब संगे जे घरक सदस्य लोकनि छथि बाल बच्चा अइ धियापुता अइ ओहो सब स्वस्थ रहता
1: आ खेनाइ अपना सब परसि कऽ दै छियनि अपन परिवार के सदस्य सबके तखन देखब जे कहि देलहुँ हे या खेनाइ राखि दै छी चलि गेलहुँ
0: नहि ई तऽ कखनो नहि हेबाक चाही
1: आब ई मे ओ नहि बैसलथि मानि लियो आबि कऽ
0: हाँ तऽ फेर माछी ओहिमे लागि जेतै तऽ जहन केओ बैसला भोजन लए इएह छै भोजन लए बैसला तऽ पहिने पानि दियौ तहन भोजन दियनि ई नहि दऽ कऽ हम कतौ चलि गेलहुँ ई तऽ एकदम नहि हेबाक चाही आ एकटा बहुत महत्व

0: महत्वपूर्ण गपै पानिक स्वच्छता देखियौ। पानि तऽ अपना सब स्नान करै छी, भोजनमे पिबै छी, खाना बनबै छी, पानि सतत साफ सुथरा रहबाक चाही, झाँपि कऽ रखबाक चाही। कतेक गोटाके देखबनि एके बर्तनसँ ओकरा घोँकि घोँकि कऽ निकालता, ओ नहि हेबाक चाही, ओकरा ढारि कऽ लेबाक चाही, घोँकि घोँकि नह ओहिमे नहि जाय,
1: एकदम
0: ओ पानि
1: या गिलासे लोटामे जे पानि लै छी
0: तऽ लिअ
1: ओकरा एना पकड़ू जे अपन सबके उंगली ओहिमे प्रवेश
0: नह नहि जाय,
1: ई नहि देखियौ बस एना कऽ पकड़ने छी।
0: तऽ एहि देखियौ बात तऽ छोटे छै, छोट छोट गप छै, लेकिन ई छोट गप बहुत महत्वपूर्ण छै। एहिसँ अहाँ सब स्वस्थ रहब, निरोग रहब,
1: लाल बहिन कहै छी खेनाइ बनबै बेर मे तऽ एकटा अपना सबके कपड़ा के तऽ आवश्यकता
0: पकड़ै,
1: हाथ पोछेला लोहिया उतारै के लेल, कोनो गरम सामान छुए के लेल, ओ कपड़ा जे रहैत अछि ओकरा रोज दिन बढ़िया से धोकर सुखेनाइ,
0: गरम पानि मे धोबाक चाही, नहि तऽ भात के जे मार पसबै छी ओहि मे कपड़ा के राखि दियौ, कीटाणु युक्त भऽ जायत। हम तऽ इएह करै छी, अहाँ खूब नीक सँ सर्फ दऽ कऽ, साबुन दऽ कऽ कतेक गोटा के देखब कपड़ा एतेक चिटचिट करैत रहत जे जायब तऽ हुनका ओतऽ चाह पीबऽ के नहि मोन होयत, एहनो गोटा के देखै छियनि। तऽ ई नहि हेबाक चाही।
1: अपन बहिन सबके तऽ आदत होइ छै जे कि भनसाघर मे जरूर कनी फुल्की मारि कऽ देख लै छी, लाल बहिन अहाँके भनसाघर मे कनी आबि कऽ देख लै छी केना अहाँ रहै छी।
0: मानो बहुत बहिन सब हमर बिजी छथि, बाहरो काज करै छथि, लेकिन काज के संग संग स्वच्छता पर ध्यान राखब बड्ड आवश्यक,
1: स्वास्थ्य के तऽ आधार वह
0: है, जे अपने नहि स्वस्थ रहब तऽ अहाँ काज की करब, अहीँ ओझरा जायब। तऽ देखियौ गप सब तऽ बहुत रास अछि, आब किछु मनोरंजन सेहो हेबाक चाही।
1: तऽ झूमर सुनै के मोन भऽ रहल यऽ, सुनाबै के मोन भऽ रहल यऽ,
0: सुना दै छी अपन बहिन लोकनि के एकटा सुन्दर सन झूमर।

0: तो लाल बहिन झूम झूम के अपना सब गीत तो सुनलो, अपन बहिन सब सुनली, मुदा एतबे झूम के फुर्ती से अपना सब जे घरक काज समेटित छी, अपन बहिन सब के देखे छे जे कि कोनो तरकारी किन के बस फ्रिज में जाकर रख दे छथिन, फिर किन के फिर रख दे छथिन, कनी बचे छे फ्रिज में रख दे छथिन, मुदा जो 4-5 दिन छोड़ देब तो हरियरे मिर्चाई के उदाहरण लिए ना, देखब जे मिर्चाई गल जात। तो साफ सफाई के कहवा के ई मतलब है हमर जे समय समय पर
1: फ्रिजो के सफाई हेबाक चाहिए, जे में वस्तु रखे
0: देखियो जो में की सब बाकी है, की सब हटेवा के
1: चाहे पुरना चीज पहिने खर्चा कर लिया फिर नवका जे रखलो बाद में करू, ई नहीं जे आगे से देखबन जे आगे से ल लेलो आ पछकड़ा जे सो सड़ रहले गेल रहले ओकरा ओकरा 10 दिन बाद फिर फ्रिज के साफ करब तब ओहो तो गंदा
0: आटा ताटा उतबे सानी जते कहाँ के खर्चा हुआ, इन जे आटा रात वाला भिनसर में पकावी
1: बचे ना, ई प्रयास करियो,
0: प्रयास करियो जे कि बेसी नै बचे, आप कहियो भ जाय छे आप
1: हाथे से दिन नै छे, लेकिन ई नै जे बहुत गोटा के देखै छै आलस जे नै भोरे सैन लेलत आ रातो में वहा बना लेलत, तो ई नै हेबाक,
0: ताजा खाना खेनाय अपना सब के साफ सफाई में होय छै जे कि एकदम स्वच्छ रहबा के लेल गरम आ टटका भोजन खाय।
1: आ एकटा गप पर छै कचरा के जखन प्रबंधन करी ते गीला आ सूखा कचरा के अलग अलग राखी आ डिब्बा जहाँ पर बंद वाला राखी, जाहिमे मच्छर के देखै छी मच्छर के तहिना कते प्रकोप है जे जहाँ साँझ हैत कि लागत सबटा मच्छर हमरे घर में आबि गेल, तो मच्छर के आ जहाँ गंदा रखबै तो ओहिपर तऽ आर ओ लुधकत, तऽ ताहि लए कचरा के से प्रबंधन करबाक चाही, बाहर भनसा घर में नहि रखके ओकरा निकालि कऽ बाहर राखि दी। तऽ ई सब जे छोट छोट गप राखब ध्यान मोनी बहिन सब बहिन जँ रखती तऽ घर स्वच्छ रहतन आ जहन भानस घर के सफाई तऽ सबसे आवश्यक यऽ, हमरा बहिन सबके आधा समय तऽ भानसे घर में बीतैया, सबसे बेसी साफ रहबाक चाही।
0: अच्छा ये कि अपना सब घर जाए छी किनको तो सबसे पहले मन में यह होते जे कि कनी हिनकर भनसा घर जाकर देखती
1: है साफ सफाई देखे छी अपन नीक लागे तो होया कि हमहु एहना राखब
0: कतेक नीक से राखे छी,
1: आ जे देखे छी किनको गंदा तो होया हे भगवान एना नै रखबाक चाही, कहियो दे छियन मुँह पर जे नै एते गंदा नै राखू, किया तो बात से जागरूको करबाक चाहिए ने, गंदा जो कोनो बहिन रखे छथि हुनका किया ने कहबन मुँह पर कहबन तखन ने बुझथिन, आ जब नहीं कहबन तहन तो नहीं बुझथिन, फिर ओहिना हमहू जाएब तो हमरो वही चाह, कते गोटा के देखे छन मन बहिन केटली में या सस्पेन एते गंदा रहत जहाँ के मोने ने मनत चाय पीब के, तो कहबा की छै जे हम बुझलो काज करै छी लेकिन एकदम साफ सफाई पर निश्चित रूप से ध्यान दऽ कर, समय लागत बेसी जहने अहाँ करबै साफ सफाई तो समय लागत, आ जँ जल्दी करबै देखै छियै ने ओहि टोला में जो उर्मिला बहिन छथिन हुनका देखबनी आधे घंटा में सब काज कऽ कऽ चलि जाइ छथिन, तऽ हमरा पहिने भूलि गेल ओ कते जल्दी कोना कऽ लै छथिन, तऽ देखलहुँ जे ओ तऽ अहिना करै छथि, तऽ देखियौ आब अपन सबके समय सेहो लक्ष्य आ गेल, बेर भऽ गेल अपन सबके
0: प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस सुनबाक तऽ सुनैत छी,
1: सुनि हमरा लोक।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र

के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस, हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है, उनकी तरफ से। उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं।

0: लेते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी, हम हाँ जोड़ते हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में, बताइए।
2: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
1: हाँ।
2: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता
1: है, जानकारियों का ही अभाव है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
1: जी
2: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
1: जी।
2: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
1: जी।
2: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
1: जी,
2: है
1: जी।
2: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
0: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
2: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक कि और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
2: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
2: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
2: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री ही कर लेते हैं।
1: हाँ।
2: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
2: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
2: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि अब नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं

0: मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहाँ तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है। तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहाँ से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी।
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए, उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में

0: क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है। अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है। हाँ। सब कुछ समान है। हाँ। उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया, ऐसा समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना
0: देना, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: जिसमें उसकी रुचि है उसके लायक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं, 9155558888, 9155558888 ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233 ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: हाँ, एखन अपना सब सुनि रहल छन है प्राइज कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस
4: एकदम कार्यक्रम घर आंगन में अपना सब जो सुनलो लाल प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस यह के संगे आब अपना सबके घर आंगन समेटबा के बेट से हो भ गेल।
3: हां, त एकरा आब समेटी आही हम कार्यक्रम खेती गृहस्थी के पसारी, त सबसे पहिने त किसान भाई लोकन के कार्यक्रम खेती गृहस्थी में स्वागत छन आ नमस्कार करै छन। आ देखियो, किसान भाई लोकन त अनवरत किछ ने किछ काज सदैत करैत रहै छथि, कखनो हाथ पर हाथ धऽ कऽ ओ बैसल नै रहै छथि,
4: चाहे खेती बाड़ी होइत अछि, व्यवसाय देखै छी कतेक रंगक काज करै छथिन अपन किसान भाई सब, आ माल जाल पोसै मे सेहो लागल रहै छथि,
3: गाय पोसै छथि, माछ पोसै छथि, बहुत रास काज करै छथि। लेकिन जानै छियै ई सब पशु जे पोसै छथि तऽ ओहिमे पोसू तऽ लेकिन ओहिपर ध्यान देबाक बड़ आवश्यकता पड़ैया, खास कऽ जखन बरसातक समय अबैया, गर्मी के बाद तो बरसाते हो भैया, तो वही में अहाँ के संक्रामक रोग से कोना ओकरा बचावल जाए, अई पर विशेष रूप से किसान भाई लोकन के ध्यान
4: कि अपन किसान भाई के अपन माल जाल के सामान्य बीमारी से लक आ संक्रामक रोग तक सबक जानकारी हेबा के
3: चाहिए। हाँ,
4: आ संक्रामक रोग में तो किछ रोग एहन होइत अछि जेकर कोनो उपचारे नहीं होइत अछि, एहन स्थिति में उपचार से बढ़िया बचावक रास्ता नीक होइत अछि, तो किसान भाई सब के सैत खन अपन माल जाल के बचा कर रखवा के चाही। आ संक्रामक रोगक रोकथाम के लेल आवश्यक अछि जे कि रोग रोधक टीका के निर्धारित समय के अंतराल पर प्रत्येक वर्ष किसान भाई माल जाल के लगवा देती।
3: हाँ, एहिमे अंठियेबाक नहीं चाही। प्रति वर्ष टीकाकरण निश्चित रूप से अपन पशु के जे किसान भाई लोकन पशु पोसे छथि हुनका टीकाकरण निश्चित रूप से करा देबाक चाही।

0: तखने हुनकर माल जाल स्वस्थ रहि सकै छन।
1: आब एहिमे एकटा अछि खुरपक्का आ मुँहपक्का संक्रामक बीमारी अछि। ई एकटा विषाणु जनित पसरै वाला संक्रामक रोग अछि जे सब जुगाली करय वाला माल जाल होइत अछि आ संकर गाय में ई बीमारी बेसी होइत अछि।
0: तो देखियो तो जे पाउज जे करिया जे माल जाल तो ओकरा ने ई ध्यान रखबाक चाही। माने जे पशु पोछे छथिन किसान भाई लोकन सबसे पहिने तो जे पीड़ित हुए जे रोग से तकरा अलग रखबाक चाही ओहि समूह में रखबाक चाही। हाँ, जे स्वस्थ पशु है तकरा से हटा कर रखबाक चाही, नहीं तो पसरे वाला बीमारी ओकरो पसरि जात। तो ई सब गो पर से किसान भाई लोकन के ध्यान रखबाक चाही। तखन आ किछ त अंदाज आबि जाइ छै देखले से जे पशु पोसै छै तो ओकर लक्षण से देखबा में आबि जाइए जे ई बीमार पशु है।
1: आ जखन बीमार माल जाल के देखभाल किसान भाई करै छथिन तो बढ़िया से वापस आबि कर हाथ पैर धो कर नीक से स्वच्छ भ कर तखने स्वस्थ माल जाल लग ओकर देखभाल करै ले जाय के छै।
0: आ सबके खेनाइ जना एक नाइर में नहीं हेबाक चाहिए, अलग अलग अलग अलग हेबाक चाहिए।
1: जतेक ई रोग सब अछि संक्रामक रोग सब प्राण घातक रोग सब होइत अछि।
0: किछु तऽ एहन जानलेवा अछि किछु छै जे अहाँ दवाई आ टीका सँ ओकर बचाव होइए।
1: तऽ जेनाकि एहि रोग सँ बचावक लेल प्रत्येक 6 मास के अंतराल पर माल जाल के टीकाकरण करेबाक चाही लाल बहिन। आ ई माल जाल में रोग पसरला के स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करबा के चाही। ई खुरपक्का मुँहपक्का संक्रामक रोग के गप के लूंगे। आ एकरा बाद गलघोटू एक प्रकार के जीवाणु से पसरे वाला रोग अछि। ई एक घातक छूत रोग अछि, छूत छूला से पसरैत अछि। गाय भैंस में प्रमुख कारण जे छै एकर गर्दन आ गला में सूजन भ जाइ छै माल जाल के। देह गर्म भ जाइ छै आ दर्द हुअ लागै छै। सूजन से सांस अंग पर दबाव आ पेट सेहो फूलऽ लागै छै एहिमे। आ नाक मुँह से पानि के एनाइ ई सब एकर लक्षण होइत अछि। ई गलघोटू जे संक्रामक रोग अछि
0: देखले से बुझा जाइ छै। आ भोजन ओहि समय मे भोजन कम करत पशु, जने कष्ट रहै छै तऽ स्वभाव के छै।
1: आ एहन तरह के जखन देखबा मे आबै तखन मालजाल के प्राण रक्षा के लेल सुनियोजित आ तत्कालिक उपचार के आवश्यकता होइत अछि। एहि रोग से बचावक लेल प्रत्येक वर्ष पशु में टीका अवश्य लगाबी।
0: पहिने तऽ जे अपना बुझबा मे आबै तऽ ठीक छै, आ ओहिके बाद नहि तऽ अहाँ कभी कल हुआ जे पशु चिकित्सक सँ से संपर्क करबाक चाही और ओहि हिसाब से पशु के देख रेख करबाक चाही। तो देखियो आप गप सप और से करब, मतलब आप किछु अपने मनोरंजन हेबाक चाही। मनोरंजन होइत रहै छै, चाह चलैत रहै छन किसान भाई लोकन के, तो कलका योजना तैयार होइत रहै छै जे काल्हि हमरा की करबाक अछि। तऽ सुनबा दै छी एकटा पहिने गीत
1: बेस तऽ सुनैत छी।

0: खूब नीक लागल ई नंद शंकर झा आ केदारनाथ कुंवर के युगल स्वर में अपना सभी चौमासा सुनलो। आ लाल बहिन, अपना सब किसान भाई के लेल जे साप्ताहिक कृषि गतिविधि लोक आवे छी ओहो सुनबाक बेर भ गेल अछि, त किसान भाई सुनू कृषि गतिविधि सविता कुमारी स।
1: आजुक कृषि गतिविधि के संग हम उपस्थित छी लाल बहिन। किसान भाई बहिन लोकनि के लेल नव नव जानकारीक संग जाले स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम

0: कृषि वैज्ञानिक लोकनि बतौलनि खेती करबाक कतेक प्रकारक तरीका। कृषि विज्ञान केन्द्र मे वरीय कृषि वैज्ञानिक सह केन्द्र के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांशु शेखर के अध्यक्षता में आयोजित 3 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भेल, जाहि मे महिला किसान सशक्तिकरण के तहत समेकित कृषि संघ परियोजना के अंतर्गत कार्य कऽ रहल सिंहवाड़ा प्रखंड के मनकौली पंचायत के शक्ति संकुल स्तरीय संघ के 55 जीविका किसान दीदी लोकन भाग लेलनि। प्रशिक्षण के उपरांत केंद्र के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा ओ अन्य वैज्ञानिक के दिस से हुनका लोकन के प्राकृतिक खेती, समेकित कृषि प्रणाली, एडवांस पॉली हाउस ओ ग्रीन हाउस तकनीक, मल्चिंग फ्रूट फ्लाई ट्रैप के उपयोग ओ मशरूम उत्पादन खेती सहित कतेको प्रकारक आधुनिक कृषि तकनीक के वृहत जानकारी देलन। किसान दीदी लोकन के कृषि कार्य पर कयल गेल विभिन्न प्रत्यक्ष ओ भ्रमण करबाक नव नव तकनीक के व्यवहारिक रूपे वो बुझैत, वो अपन अपन खेत में उपयोग कोना करैत तकर गुर बतौलन। प्रशिक्षण के उपरांत केंद्र कृषि अभियंत्रिकी निधि कुमारी, सूक्ष्म सिंचाई डॉक्टर पूजा कुमारी, कटाई के उपरांत फल और तरकारी के मूल्य संबंधित उत्पाद बनाएब फार्म मैनेजर डॉक्टर चंदन कुमार, जैविक और टिकाऊ खेती के महत्व के विषय में जानकारी देलन। एतबे ने शशिमाला कुमारी, पौध में माटि उत्पात जांच सँ की लाभ होइत अछि से कहलन। ई प्रशिक्षण सिंहवाड़ा प्रखंड जीविका के BPM अमित कुमार चौधरी के दिस से कराओल गेल छल। ऐसा बहुत लाभ उठाओल जा सकैत अछि। आशा करै छी जे किसान भाई और किसान दीदी लोकन ऐसा बेसी से बेसी लाभ उठेती जे एखन बेरक मांग अछि। विगत 25 मई सोम दिन का बिहार में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार लीची संगम के आयोजन कयल गेल, जकर स्लोगन छल बाग सँ निर्यात धरि। ओ एकर मूल उद्देश्य छल खेती सँ समृद्धि धरि प्रदेशक किसान लोकनि के ल जायब। संग संग हिनक लोकनि के सहभागिता सँ एहि आयोजन के सफल बनायब। एतबे नहि, लीची के प्रोसेसिंग इकाई के लगायब, कृषि विशेषज्ञ लोकनि के द्वारा देल गेल मार्गदर्शन सँ लाभ उठायब इत्यादि एकर मुख्य उद्देश्य छल। विगत 24 मई के दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत उपस्थित मखाना अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दिस सँ किसान भाई बहिन बीच उर्वरक के संतुलित व्यवहार ओ माटिक स्वास्थ्य के संरक्षण के ध्यान रखबाक उद्देश्य सँ खेत बचाओ अभियान के माध्यम सँ मधुबनी जिलाक झंझारपुर प्रखंडक रैयाम ग्राम में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम में किसान भाई बहिन लोकनि के माटि, पानि ओ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कयल गेलनि। संगहि टिकाऊ खेती अपनेबाक प्रसंग में सेहो जागरूक केलन। एहि अवसर पर मेरा गांव मेरा गौरव टीम के नोडल अधिकारी वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार जनतब देलन जे स्वस्थ माटि और स्वस्थ पर्यावरण राष्ट्रक विकासक मूल आवश्यकता अछि। संग संग किसान लोकन सँ संतुलित पोषण प्रबंधन, जैविक संसाधन के उपयोग ओ बेसी सँ बेसी गाछ वृक्ष लगेबाक आग्रह कयलनि। बस आइ एतबे।
1: अखन अपना सब सुनै छलहुँ हैं कृषि गतिविधि वाचन आ संकलन सविता कुमारी के। किसान भाई के बहुत नीक नीक जानकारी भेटल हेतनि, एहिसँ सब गोटे के लाभ सेहो भेटल हेतनि। आ केहन लागैए अहाँ के कार्यक्रम खेती गृहस्थी में कृषि गतिविधि, ओ अवश्य ईमेल के माध्यम से आ पत्रक माध्यम से हमरा सबके पठायब। हमर सबके पत्राचार के पता अछि कार्यक्रम खेती गृहस्थी द्वारा के

0: केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा पिन कोड 8460004 किसान भाई के अपना सब फिर से मनोरंजन दिस
1: सुनी हमारे एक फिर लोकगीत।

तऽ एखन अपना सब देवी गीत सुनि रहल छलहुँ हँ। आशा करै छी हमर किसान भाई लोकनिके सेहो खूब नीक लागल हेतनि। आ देखियौ मौसमके मिजाज तऽ केना बदलैत रहै छै, कखनो केहन कड़गर

0: हौद आ कखनो कते अन्हर बिहाड़ि लऽ कऽ आ मेघ जब बरखा दैए तऽ एहिमे हमर किसान भाइ लोकनिके साकांक्ष रहऽ पड़तनि आ बेरपर अपन प्रमुख काजके प्राथमिकता देबऽ पड़तनि। तऽ मौसम की कहि रहल छै से एक झलक पहिने किसान भाइ लोकनिके कहि दियौ।
1: डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुरसँ जे मौसमके जानकारी भेटल यऽ से 27 मई सँ 31 मई धरिके आयल यऽ। अखन अगिला 3-4 दिनमे उच्च तापमान, हवामे बेसी नमी आ अनुकूल मौसमीय सिस्टमके प्रभावसँ उत्तर बिहारक अधिकांश जिलामे हल्लुकसँ मध्यम वर्षा भऽ सकैत अछि। वर्षाके समय तेज हवा सेहो चलि सकैत अछि। औसतन आ रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा हवाके रहि सकैत अछि आ किछु स्थान पर बिजली खसबाक सेहो संभावना बनि रहल अछि। पूर्वानुमानित अवधिमे बेसी जिलामे अधिकतम तापमानमे गिरावट आबि सकैत अछि। हालांकि सारण सिवान दिस अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकैत अछि आ न्यूनतम तापमान 21-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहि सकैत अछि। सापेक्ष आर्द्रता भिनसरमे 70-75% आ दुपहरियामे 35-40% रहबाक सेहो अनुमान बनि रहल अछि। आ किसान भाईके एहन मौसममे रबी मकईके कटनी आ भण्डारणके काज प्राथमिकतासँ करे के सुझाव देल जा रहल अछि। पूर्वानुमानित अवधिमे वर्षा के संभावना के देखैत एहि काजमे सावधानी बरतनाय सेहो आवश्यक अछि। ग्रीष्मकालीन मकई के तना छेदक कीट के बचाव के लेल नियमित रूप से किसान भाई निगरानी करथिन आ वज्रपात मेघ गर्जन के समय में खेत में काज करै से किसान भाई अवश्य बचवा के चाही। आ जो खेत में छी आ मेघ गर्जन भ रहल यऽ तुरंत सुरक्षित स्थान पर शरण लऽ ली।
0: ई तऽ बहुत नीक गप अहाँ मोनि बहिन कहलहुँ हँ, किया तऽ देखते छियै एखने सूचना देल गेल जे पूर्वानुमान अइ जे आंधी तूफानके सङ्ग अबैया मेघ, तऽ एहिमे साकांक्ष रहबाक चाही ने। काज जे करै छथि तऽ जहने बुझबामे आबै जायब एखन बिहारि वला मौसम भऽ रहल अछि तऽ अपन अपन घर पकड़ि लेबाक चाही, खेतमे नहि रहबाक चाही, खुजर ठाममे कखनो नहि,
1: गाछो तरमे नहि रहै।
0: तऽ आब अपन सबके कार्यक्रम जे खेती गृहस्थी ओ आब समेटबाक बेर भऽ गेलै मोनी बहिन, तऽ आब एकरा आब समेटी आ किसान भाई लोकनिसँ चलबाक हमसब आज्ञा लै छी। नमस्कार मोनी बहिन।
1: नमस्कार लाल बहिन।

अभी आप सुन रहे थे गाम घर, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कहाँ चलती है, इधर तो
5: इधर आइए, इधर
6: इधर।
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेट

0: वर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक पीडीएस को जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को मिली स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकारों को बताया संवैधानिक। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली

0: में मीडिया को यह जानकारी दी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को वैध करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक अनिवार्यताओं की प्रक्रिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा SIR पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। श्री कुमार पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
3: चाहे बिहार में SIR हो या पश्चिम बंगाल, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए कि जनता में जो आप भ्रम पैदा कर रहे थे, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब नजरिया साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कहा है, माफी मांगिए इस देश की जनता से।
0: इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में शुरू किए गए SIR के निर्णय को बरकरार रखने के फैसले को सही ठहराया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने SIR को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया था।
4: SIR अधिकार है चुनाव आयोग का। ये लोग क्या चाहते थे, डबल डिजिट रहे, मृतक का नाम रहे, रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम रहे, घुसपैठिए का नाम रहे, परमानेंट शिफ्टेड का नाम रहे। एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था बिहार में और राहुल गांधी और विपक्ष से सुपरास साफ कर दिया जनता ने। और अधिकार है, उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि चुनाव आयोग का अधिकार है SIR, अब वो कर रही है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सड़क परियोजनाओं, रोजगार, स्वास्थ्य और न्यायिक ढांचे से जुड़े कुल 27 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने लोकहित की परियोजनाओं के लिए नई भूमि नीति के तहत बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर अब लोकहित परियोजनाओं के लिए रैयती भूमि आपसी सहमति से खरीदी जाएगी।
5: बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत रैयत से सीधे भी भूमि खरीदी जा सकती है एक्विजिशन प्रक्रिया में गए बगैर, और इसमें जो सामान्यतः प्राप्त होता है उसे 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया। यह अपेक्षा है कि इससे भूमि विभिन्न उद्योगों तथा विकास कार्यों के लिए प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
0: बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए राज्यकर्मियों, पेंशनधारियों और जनप्रतिनिधियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही PMCH के हड्डी रोग विभाग में 39 नए पदों के साथ एक स्वतंत्र स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट स्थापित की जाएगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए श्रम संसाधन विभाग का नाम अब युवा

0: रोजगार कौशल विभाग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज पटना में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीम्स के तहत छात्रवृत्ति लाभुकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 1,04,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिला है। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से इस वर्ष 1,41,000 अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभान्वित हुए हैं।
1: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग चाहे वो एससी एसटी वर्ग के छात्र हैं 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं, उनको इससे देने का काम किया जाए। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20,00,000 छात्रों को दिया जा रहा है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्र छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाए।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज, ई मापी और अभियान बसेरा के लंबित मामलों का तेजी से निपटारे का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कार्य निष्पादन की समीक्षा होगी। श्री जायसवाल ने किसान पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए परिमार्जन मामलों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। कुर्बानी का त्यौहार बकरीद कल मनाया जाएगा। बकरीद के त्यौहार को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। DGP विनय कुमार ने कहा है कि दंगा नियंत्रण वाहन संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती करेंगे। STF के पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने कहा है कि कल सुबह 4 बजे से पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने आज जिले के ललित ग्राम में रेलवे वाशिंग पिट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वाशिंग पिट के निर्माण से सुपौल सहित कोसी क्षेत्र में रेल सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में भिंडी तोड़ने के विवाद में महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनवरिया पंचायत के मढ़िया गांव में जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। इस घटना में एक SI समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पटना जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित एक 2 मंजिला मकान से युवक ने छलांग लगा दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का सितम जारी है। राज्य का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है।

0: है। गर्मी से बचने के लिए राज्य सरकार की ओर से जागरूकता अभियान के साथ विभिन्न जगहों पर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जिलों में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। गर्मी से बचने के लिए सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बिना काम दोपहर बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि गर्मी में बच्चों पर विशेष ध्यान दें। गर्मी को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षा के संचालन पर रोक लगा दी है, जबकि वर्ग 9 से 10 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 11 बजे तक ही किया जा रहा है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि दक्षिण बिहार का तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य जिलों के कुछ भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इधर 43.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ आज कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर बारिश के दौरान मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआ बाग स्थित नया टोला में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपौल जिले के बीरपुर स्थित हृदय नगर में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण विभिन्न जिलों में पेड़ और बिजली के पोल गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इधर तेज आंधी तूफान से आकाशवाणी भागलपुर का मीडियम वेव टावर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, इससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 19,838 सिपाही पदों के लिए हुई परीक्षा में 12,509 पुरुष, 7,312 महिलाएं और 17 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 7 से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक पीडीएस को जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को मिली स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकारों को बताया संवैधानिक। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अक्टूबर दिसंबर 2025 की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में बांका जिले ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं जिले ने आधारभूत संरचना सेक्टर में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। जिले की यह सफलता स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन,

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अक्टूबर दिसंबर 2025 की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में बांका जिले ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं जिले ने आधारभूत संरचना सेक्टर में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। जिले की यह सफलता स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी सुविधाओं में किए गए सतत प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने इसका श्रेय सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मियों, आकांक्षी प्रखंड फेलो और NIC बांका की टीम को दिया है। इधर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों और प्रमुख स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 10 गैस एजेंसियों और 34 महत्वपूर्ण स्थलों की जांच की जा चुकी है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए समरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बीते दिनों आए चक्रवाती आंधी तूफान से जिले के लोग परेशान दिखे। रजौन में तेज हवा के कारण एक दर्जन से अधिक पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि 13 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। दूसरी ओर धोरैया प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी ने कई परिवारों की मुश्किल बढ़ा दी। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्र व्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले के तहत बांका जिले के 6 प्रखंडों में 21 से 23 मई तक 64 आदि सेवा केंद्रों पर विशेष जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना तथा लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। शिविर में ग्रामीणों का भारी उत्साह देखने को मिला और विभिन्न काउंटरों पर लगी लोगों की भीड़ उमड़ी रही। शिविर के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं सहित अन्य योजनाओं से संबंधित कुल 3,392 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,848 का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 1,807 स्किल सेल एनीमिया जांच, 297 टीवी जांच, टीकाकरण तथा 213 आयुष्मान भारत कार्ड आवेदनों का त्वरित निष्पादन भी किया। जिले में महिला और बाल विकास निगम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल विवाह रोकथाम और निषेध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांका सदर प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी कटेली पंचायत के ग्राम दुधियातरी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत बांका जिले में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में समरणालय स्थित मिनी सभागार में आम जनों की समस्याओं की सुनवाई की जा रही है।
0: अभी आप सुन रहे थे बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विदु शेखर।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231

लीजिए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म परदेसी से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म चोर और चांद से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम। योगेश के लिखे गीत को संगीत दिया है निखिल विनय ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में चोर और चांद फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीर रांझा से। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी। कैफी आज़मी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

अभी आप सुन रहे थे हीर रांझा फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यासा सावन से, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के गाए प्यासा सावन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है मैथिली में संबोधित हमारा कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार श्रोता बंधु लोकनि, स्वागत है अपने सब गोटे के सिंहारक आजुक अंक में। अहाँ सबसे गपशप करबाक लेल अहाँक रेडियो सेटक संग संग न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यम से अहाँक मोबाइल सेट पर सेहो उपस्थित भ गेल छी। हम सोनू बंधु लोकनि, जेना कि अपने सबके ज्ञाते अछि जे एक कार्यक्रम में हम अपने लोकनि लेल गीत नाद लऽ कऽ अबै छी, ते संगे किछु शब्द विमर्श सेहो करै छी। जँ समय रहैए तऽ काव्य वा कथा पाठ सेहो सुनैत छी, किंतु ई सब तऽ करै छी से एहि लेल जे कथा कविता सँ वा कि गीत सँ अपने लोकनि के आनंदक अनुभूति होइत अछि। मुदा ताहि सँ पहिने तऽ हमरा लोकनि किछु गप सेहो करै छी। काव्य जे छै से ककरा बेजा लगैत छै? काव्य पाठ तँ सब केओ सुनैये चाहैत अछि ने, से किएक ने? काव्य पाठ सभक मोन के आनंदित करैत रहै छै। तकर कारण अछि जे काव्य कोनो हुए, ओहि मे व्यक्तिक हृदय के जे मर्म स्थल अछि तकरा छुबाक सामर्थ्य रहैत अछि। ओहिसँ एकटा तरंग निकलैत अछि आ ओ सोझे मनुष्यक मस्तिष्क पर अपन प्रभाव दैत अछि, जाहि कारणसँ मनुष्य स्वयं ओहिमे अपना के स्थापित करैत अछि आ तखन ओकर अनुभूति करैत अछि। अब जेना देखियौ ने, रामायण जे अछि, रामायण महाकाव्य जे अछि, जखन कोनो व्यक्ति ओकर पाठ करैत छथि वा सुनैत छथि आकि देखैत छथि, तखन ओ स्वयंकें कोनो पात्रक पात्र लग अपनाके रखैत छथि। ओहि पात्रमे स्वयंकें

देखैत छथि, स्वयं के अनुभूति करैत छथि। तैं जखन ओ पात्र दुख में रहैत अछि तब व्यक्ति के दुख होइत छै, जखन ओहि पात्र के सुख भेटैत छैक तब व्यक्ति सेहो सुखी होइत अछि, ओकरो खुशी भेटैत छैक। ऐसे हम सब बेसी काल देखैत छिए, जेना रामायण में जखन सीताक विवाहक प्रसंग अबैत अछि तऽ सब केओ आनंद विभोर भ जाइत अछि, कारण ओहि सीता में अपन धिया देखाइत छनि, तैं लोक आनंदित होइत अछि। मुदा वह सिया जखन अग्नि परीक्षा दैत छथि वा हुनक वन जेबाक जे प्रसंग अबैत अछि, तखन हमरा अहाँक आँखि सँ अश्रुपात हुअ लगैत अछि। किएक? कियाकि ओहि सीता में हम अपन धिया देखैत छिए, हम स्वयं के ओहिमे ठाढ़ पबैत छी। तैं यह गुण काव्य में होइत अछि जे ओ लोक के जोड़ि लैत अछि अपना संगे आ ओकर सुख दुख बुझाए लगैत छै ओहि काव्य सँ। तैं काव्य लोकक मर्म स्थल के छुबैत अछि। से काव्य किए? गीत तऽ सेहो तेहने सनक होइत अछि ने। आउ ने एकटा पहिले मैथिली गीतक आनंद लैत छी आ तखन आर किछु गपसप करब।

आहा, बहुत सुंदर गीत, एकदम कर्णप्रिय, हृदय स्थल के छुए वाला गीत छले। धन्यवादक पात्र छलाह बोध नारायण सिंह। हम सब गप कर रहल छलों हैं काव्यक प्रसंग। अपन जो मातृभाषा अछि माने मैथिली अछि, एहिमे कतेको काव्य लिखल जा चुकल अछि। काव्य क्या महाकाव्य सेहो लिखल जा चुकल अछि। तऽ आइ हम अपन मातृभाषाक एगोट महाकाव्य राधा विरह पर, राधा विरहक प्रसंग किछु गपशप करी, जकर प्रणेता छथि मधुप मने काशीकांत मिश्र मधुप। एकटा समय छल जहिया मधुप जीक लिखल गीत प्रत्येक मैथिलक ठोर पर बसैत छल। मिथिलानी लोकनि त एकरा हरदम गबैत छली, से चाहे उपनयन ब्याहक समय होए आकि अंदीना। हुनक जे श्रृंगारी गीत सब छल से समय समय पर सभक ठोर पर पसरित छल आ गीत गाबि कऽ सब आनंदित होइत छल। गीत त जे छलनि हे हुनक आम जनमे से अपन स्थान पेबे केलक, संगहि संग हुनक जे महाकाव्य राधा विरह सेहो साहित्य जगत मे बेस प्रशस्ति पौलक अछि। ई महाकाव्य 1969 ईस्वी मे प्रकाशित भेल आ 1970 ईस्वी मे साहित्य अकादमी पुरस्कार सँ एकरा

सम्मानित सेहो कयल गेल। 17 सर्गक एहि महाकाव्य मे मुख्य रूप सँ श्रृंगार रस अछि, मने ई जे राधा विरह महाकाव्य अछि ताहि मे श्रृंगार रस भरपूर मात्रा में अछि। मने एकर आन रस सब तऽ सेहो छै, मुदा अंगी रूप में श्रृंगारी रस आयल अछि। एहि महाकाव्यक नायिका राधा छथि, से एकर नामे से स्पष्ट भ जाइत अछि ने, राधा विरह। आब ई विरह मने की? विरह मने ककरो वियोग में रहब। तऽ राधा किनकर वियोग में रहै छथि? तऽ एकमात्र कृष्णक वियोग में। राधा कृष्णक वियोग में छथि, हुनक वेदना चरम सीमा पर हेतनि। अही चीज के, यह बात के मधुप जी अपन राधा विरह महाकाव्य में देखेबाक प्रयास कयलनि अछि। कारण जे राधा तऽ राधा छथि, कृष्ण हुनका सँ दूर भेल छथिन, दूर जाय चाहै छथिन, आ से जखन हुनका भान होइत छनि तऽ हुनक पीड़ा, हुनक जे कष्ट से अतिशय बढ़ि जाइत छनि, तकरा से अपन काव्य प्रतिभा सँ परसबाक लोक लग में, आम जन लग में, रसिक श्रोता लग में, रसिक पाठक लग में अनबाक जेहनक प्रयास छनि से एकदम सफल प्रयास छनि। ततबे नहि, राधा विरह के माध्यम सँ ताहि समय में जे समाज में कुरीति सब व्याप्त छल, तकरा सेहो देखार के लेने अछि राधा विरह के माध्यम सँ। जाहि समय में ई महाकाव्य लिखल गेल, ओ समय निश्चित रूप सँ मिथिला लेल अभिशापक समय छल। कारण ताहि समय में बाल विवाह होइत छल। बाले विवाह टा नहि, अनमेल विवाह सेहो होइत छल, जाहिमे कोनो बालिकाक अवस्था जते रहै छल ताहिसँ 3 गुना 4 गुना बेसी अवस्थावला पुरुषसँ, वा कही जे बूढ़सँ ओकरा ब्याहि देल जाइत छल। ई एकदम से ओहन समय छल जे मिथिलाके एकदमसँ से त्रस्त केने छल। तकरा ओकर जे दुष्परिणाम सब छल ताहि दिस सेहो ई महाकाव्य हमरा बुझबैत अछि, देखबैत अछि, कुरीतिके सेहो उजागर करैत अछि। ठीक छै, हमरा लोकनि जे गप कऽ रहल छी से राधा विरह महाकाव्य पर, आर किछु गप सप करब, मुदा हमरा लगैए जे एकटा आर कर्णप्रिय मैथिली गीतक आनंद लऽ लेल जाय।

एखन राम सेवक ठाकुर सँ ई गीत हमसब सुनि रहल छलहुँ हैं। बंधु लोकनि, बुझल अछि अपने सबके जे सिंगरहारमे हम गीत तऽ सुनबैत छी, मुदा सङ्गे सङ्गे एकर जे

आर कार्यक्रम में हम रखे छी ते में एकटा शब्द विमर्श सेहो रहैत अछि। तो किएक ने हमरा लोकन किछ शब्द पर गपशप क ली, तखन फिर समय बचते समय रहते तो आर गपशप करब। एक क्रम में आई एकटा शब्द अछि पहर। पहर मने होइत अछि समय। कहै छै एक पहर बीत गेले मने समय बीत गेले। आ पहरा, पहरा मने की होइ छै? पहरा मने होइ छै जे पहिने गाम में एक गोटे राति का जगैत छला आ भरि गाम घूमैत छला आ हल्ला क के सबके जागल रहबाक लेल कहै छलखिन से जोर जोर सँ। ओ जे राति खन के जोर सँ लोक के जागल रहबाक लेल कहै छला तकरा पहरा देव कहल जाइत छलै। आ गोबरौर मने तो बुझते हेबै गोबरौर ककरा कहल जाइत अछि? गोबरौर कहल जाइत अछि जे गोबर रहैत अछि जाहिसँ घर अंगना छछारल जाइत अछि ओहिमे एकटा कपड़ा सेहो राखल रहैत अछि। ओ कपड़ा संगे जे समेट रहैत अछि गोबर सब लागल तकरा गोबरौर कहल जाइत अछि। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। बंधु लोकनि हमसब गप कऽ रहल छलहुँ हैं महाकाव्य पर। काशीकांत मिश्र मधुपक जे महाकाव्य छनि राधा विरह ताहि प्रसंग हमरा लोकनि से गप कऽ रहल छलहुँ हैं। जेना कि हम पहिने कहलहुँ हैं जे ई जे महाकाव्य अछि राधाक जे विरह छलनि हैं से तऽ एहिमे अछि, संगहि संग मुख्य रूपसँ एहिमे अपन समाज पर चोट कयल गेल अछि। ओहन जर समाज जे अबोध नेनाके जकरा अपन जीवनक कोनो टा ज्ञान नहि रहैत छलै तकरा बूढ़ कोकनल संगे संग लगा दैत छल, ताहि समाज पर मे सेहो कटाक्ष छनि व्यंग छनि। असे कोना हुनके एकटा पंक्ति सम सुनबैत छी ए राधा विरह सँ। आधे पहर राति सँ पराती गायब छलाह पहर जे दैत। आधे पहर राति सँ पराती गायब छलाह पहर जे दैत। निंदक भेने कमी ताहि निंदक युवजन केर व्यंग सुनैत। बाल कुरंगी नयन जकर भुज जान छोड़ा भागल बुझ भोर। चौंक चुहक ग्रीवा में सर्टिफिकेट दैच कंगनाक न छोर। ई पंक्ति ओहि समयक स्थिति छलै तकरा देखार करैत अछि ओहि वृद्ध के जे आब बूढ़ भऽ गेल छथि, देह झुकि कऽ धनुष जकाँ भऽ गेल छनि। युवक सब हुनक से हुनका पर व्यंग करैत अछि। ओ ओहू अवस्था में अपन तरुणी पत्नी लग जेबाक प्रयास करै छथि आ हुनक जे ओ तरुणी से हुनका झटक कऽ दूर भऽ जाइत अछि। हुन एहि जे प्रकरण में ओहि झिकझोरी में से हुनका नछरा सेहो जाइत छनि।

आब अधरतिया में करता की नींद तो हो नहीं छन, तें पराती गवित रहित छथि। ओ पराती नहीं लगित रहित छे जना पहरा दैत होइत। ई उस समयक यथार्थ चित्रण अछि। आ देखू जे एहि संग सिंहारक समय सेहो संपन्न होइत अछि, तो सोनू के चलवाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली में संबोधित हमारा कार्यक्रम सिंहरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट के अलावे आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। UCC लागू करने वाला 3रा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी

0: स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा

0: उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक

0: में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte hain?

0: at Thiruvananthapuram and Kannur. The officials were attacked in Thiruvananthapuram while they were returning after carrying out searches, and their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं तनवीरुल फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के आईएसएसएफ आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि एआई की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम पीडीएस के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस समत में पीडीएस को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इकदाम पीडीएस के तहत फराहमी लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम

0: को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निज़ाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े AI पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक AI की क्यादत वाली रियल टाइम PDS मुस्तफिदीन का निज़ाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई ज़हानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम AI पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है, जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा PDS स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस की रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएँ तो पानी के बोतल के साथ जाएँ। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीज़ो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की, किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: खुरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहिनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमू तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आज़ाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें 4 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आसाम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड आसाम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अजम रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000

करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर आजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मश्क आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में इंतलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका

0: समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अभी बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है, तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेस के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकाल

0: लेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकुत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
2: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे है बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है, और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल

0: इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें। सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे। ये रास्ता खुला ही है। अगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल कर रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना

0: चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
1: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
0: जी,
1: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोरबेली कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो

0: जी
1: 1983 में जो आईएमडीटी एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोली कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है, जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
0: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
0: प्रफुल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
1: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो

0: का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक डिलीट एंड डिपोर, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में

0: सोचा जाएगा, तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं।
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी।

नमस्कार, लोक माधुरी के साथ मैं गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी का लोक गीतों के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। विभिन्न गीत संगीत की दुनिया में लोक गीतों का एक अलग स्थान रहा है, एक अलग महत्व रहा है। लोक गीत लोक जीवन का एक बड़ा धरोहर है। यह लोक जीवन की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो हमेशा समय और अवसर के अनुसार गुंजते हुए इस जीवन की भावनाओं को व्यक्त करता रहा है। बात हम मिथिला के लोक गीतों की करें तो यहाँ के लोक जीवन में हर पर्व त्योहारों में, हर उत्सव उमंग में, विभिन्न मौसम में ये गीत गुंजता रहा है। मिथिला में हर तरह के लोकगीत भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर अंतिम विदाई तक के संस्कार गीत, लोक पर्व त्योहारों से लेकर विभिन्न मौसम पर उमड़ने वाली भावनाओं के लोकगीत, ये सारे गीतों का यहाँ भंडार है, जो अपने समय और अवसर के अनुसार गुंजता रहा है। जन्म यानी छठी उत्सव पर सोहर बधैया गीत से यहाँ के घर आंगन गुंजते रहे हैं। मुंडन के अवसर पर मुंडन गीत गाए जाते रहे हैं। विवाह के अवसर पर विवाह के विभिन्न रस्मों के गीत गुंजते रहे हैं। विदाई पर विदाई गीत यानी समदौन गीत, तो अंतिम विदाई पर निर्गुण गीत गाए जाते रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न लोक पर्व त्योहारों से लेकर विभिन्न मौसम के गीतों के माध्यम से यहाँ की लोक भावनाएं व्यक्त होती रही हैं। जैसे नवविवाहितों के सुहाग का पर्व मधुश्रावणी पर बटगमनी गीत, सुहागिन के सुहाग का पर्व तीज पर नचारी महेशवाणी गीत, भाई बहन के प्रेम का पर्व सामा चकवा के अवसर पर गाए जाने वाले सामा चकवा गीत, इसी तरह

फागुन के महीने में फगुआ गीत तो चैत के महीने में चैती गीत, सावन भादो जैसे बारिश के महीने में कजरी गीत तो बारहों महीने में मौसम के। हमसे बारहों महीने के विभिन्न मौसम के अनुसार उमड़ने वाली इच्छाएं भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। जैसे चैत वैशाख के मौसम में टिकोला की चटनी खाने की इच्छा, सावन भादो जैसे बारिश के मौसम में झूला झूलने की इच्छा, आश्विन और कार्तिक के त्योहार भरे महीने में मेला घूमने की इच्छा आदि। इस तरह के हर महीने के हर मौसम के अनुसार जो इच्छा मन में जागती है उसे व्यक्त करने का बारहमासा लोकगीत एक अच्छा माध्यम रहा है।

मिथिला में बच्चे के जन्म उत्सव पर यानी छठी उत्सव पर सोहर बधैया गीत गाने की परंपरा रही है। इस उत्सव के अवसर पर घर एवं आसपास की उपस्थित महिलाएं सोहर बधैया गीत के माध्यम से नवजात को लंबी उम्र के साथ साथ स्वस्थ एवं सफल जीवन का आशीर्वाद देती हैं। नवजात की फुआ और पमरिये ऐसे शुभ अवसर पर बधैया स्वरूप विभिन्न उपहारों की मांग करते हैं। नवजात की फुआ जहां अपने भैया से बधैया की मांग करती हैं, वहीं पमरिये नवजात को गोद में लेकर नाचते सोहर बधैया गीत गाते घर परिवार के सभी बड़ों से बधैया की मांग करते हैं। चाहे नवजात की फुआ हो या पमरिये, ऐसे अवसर पर बधैया की मांग करना उनका अधिकार होता है।

मिथिला में विवाह गीतों का बड़ा महत्व रहा है। यहाँ विवाह की जितनी भी रस्में होती हैं, लगभग उन सभी रस्मों के निर्वहन में उस रस्म के गीत गूंजते रहे हैं, जैसे चुमाउन, परीक्षण, सिंदूरदान, कोहर आदि रस्म। विवाह के इन सभी रस्मों के गीतों से भरा है ये क्षेत्र। बात हम कोहर रस्म की करें तो ये रस्म विवाह की विभिन्न रस्मों का निर्वहन करते हुए थक चुके वर वधु को कुछ समय के लिए विश्राम करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस रस्म के निर्वहन में वधु की भाभी, छोटी बहन, सखी सहेलियों की बड़ी भूमिका होती है। ये सभी वर वधु के साथ हंसी ठिठोली करती हुई उन्हें कोहर घर तक ले जाती हैं और इस बीच उपस्थित महिलाएं कोहर गीत गुंजाने लगती हैं।

समदौन गीत मिथिला का एक ऐसा लोक गीत है जो विदाई के समय गूंजता है। विवाह के उपरांत जब बेटी की विदाई होती है तो ये गीत बेटी के प्रति उमरता प्यार, विदाई की पीड़ा, उनसे जुड़ी और भी कई भावनाओं को व्यक्त करता है। बेटी जिस घर में जन्म ली, जिस पिता के प्यार पाते बड़ी हुई, जिस माता की ममता पाती रही, जिस सखी सहेलियों के संग खेली कूदी, उन सभी बातों को अपनी यादों में समेटी चल देती हैं एक नई जगह, एक नई दुनिया बसानी, और छोड़ जाती हैं अपने मैके में अपनी यादों को। इन सभी बातों पर उमड़ती भावनाएं बेटी की विदाई पर गाए जाने वाले समदौन गीत में पाए जाते हैं। समदौन गीत विदाई के भावुक पल को और भावुक बना देता है।

इसके साथ ही लोक गीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों के गीतों को सुना उनके नाम हैं विभा सिन्हा, श्यामा कुमारी, नीलम झा और स्नेहा झा। आलेख और वाचन गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का था। प्रस्तुतकर्ता थे अमरनाथ प्रसाद। तो अब कार्यक्रम से मुझे यानी गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव को दें अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें,

0: रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी। श्रोताओं, लीजिए फिल्म संगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनते हैं गीतों के रंग।

श्रोताओं, गीतों के रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं दीपक कुमार झा। श्रोताओं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके अपने अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और अलग अलग बातें होती हैं। आज के इस गीतों के रंग कार्यक्रम में हमने कुछ अलग, कुछ हटके लाया है, वो है दिल लगाने की बातों को। जी हाँ दोस्तों, आज हम दिल लगाने को एक विषय के रूप में लिया है और इसी बात को केंद्र में रखते हुए, इसी पर आधारित आज आपको हम फिल्म संगीत सुनवाएंगे। हर किसी से दिल लगाना आसान नहीं होता और जिस पे लगे उसे भूल पाना आसान नहीं होता।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में अभी हम ये गीत सुन रहे थे, अगर दिल किसी से लगाया न होता। वाकई ये दिल भी बड़ी अजीब चीज़ होती है, यदि किसी पे आ जाए या यदि दिल खो जाए तो हमारे अलग अलग अवस्थाएं हो जाती हैं, हम अलग अलग दृष्टिकोण से इसे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तेरी चाहत रुसवा यूं सरे बाजार हो गए, हमने ही दिल खोया और हम ही गुनहगार हो गए। आशिकी का हो भला सबका भला करती है यह, दिल लगाना सिखा देती है सब कुछ भूलकर। आइए एक और फिल्म संगीत इसी दिल लगाने से सुन रहे हैं।

कि पहले तो होश छीन लिए दिल लगा के आप, पहले तो होश छीन लिए दिल लगा के आप, अब कह रहे हैं होश में आओ खुदा के लिए। कि हुआ यूं था कि खेल समझकर खेल रहे थे हम दुनिया के मेलों में, खेल समझकर खेल रहे थे हम दुनिया के मेलों में, दिल क्या लगा बैठे हम खुद ही खिलौना बन गए।

अभी हम सुन रहे थे एक रिश्ता फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। श्रोताओं, आज दिल लगाने को लेकर इसी रंग से हमने संपूर्ण गीतों को रंगा है। दिल लगाने से पहले जरा सोच लेना साहिब, कि दिल लगाने से पहले जरा सोच लेना साहिब, यहां हर मुस्कुराहट वफा की निशानी नहीं होती। दिल तो तब भी धड़कता था जब तुम न थे, दिल तो तब भी धड़कता था जब तुम न थे, पर दिल लगाने के बाद धड़कन को एक नाम मिल गया।

दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। वाकई किसी को दिल लगाना हो तो ऐसे लगाओ, किसी को दिल लगाना हो तो ऐसे लगाओ जो धड़कने बने, जो धड़कने बने वो जिंदगी में उतर जाए। श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग अब यहीं समाप्त होता है। आज हम जिन जिन फिल्मों के गीत सुने उसमें परिचय, अनोखी अदा, दिल है तुम्हारा, एक रिश्ता और जिंदगी और मौत। आज के हमारे कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, उमा देवी, अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण और महेंद्र कपूर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों के रंग, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन

0: सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। और इसके साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
2: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के

अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।